कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2026 सितंबर महीने का मंगलवार दिन और तारीख है 8। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीते में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता बीजे शर्मा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। 6:40 सुनिए गालो डायलेक्ट न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां आपको मिलेगा योगा एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप अतानी दालिक न्यूज, 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में।

7:40 पेश है सदाबहार सूरी म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्र समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर के खास खबरों के साथ 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10। एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड जहां बजेंगे आपकी पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं।

0: आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा, वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, covering 326 route kilometers developed at a cost of more than 20,700 crore rupees. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual FinTech conferences, is potential to impact agentic AI, tokenization, quantum trusted, connected, global systems for inclusive finance. The GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the Council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. The Council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear Reiki vehicles, high mobility vehicles, self-propelled mechanical mine layers, advanced light helicopters, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhara radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war-fighting capability. Luxembourg Deputy Prime Minister and Foreign Minister Xavier Bettel has backed India's bid for a permanent seat at the United Nations Security Council, UNSC, saying the body must be reformed to reflect the realities of the present global order. In an interview with the news agency, Mr. Bettel said India's size and global importance make its inclusion in an expanded Security Council necessary. He said the UNSC could be expanded to include major countries that currently do not have a permanent role, citing India and Brazil. Iran has highlighted India's role as a vital diplomatic hub ahead of Iranian President Masoud Pezeshkian's visit to New Delhi for the upcoming BRICS summit.

दोस्तों, अभी आपने सुना दिल्ली से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। तो दोस्तों, इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत पेश है, भक्ति गीत।

दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत भी होगी। ये आकाशवाणी टानर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कालो भाषा में समाचार।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार आकाशवाणी चैनल कारण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से। अरुणाचल की खूबसूरत वादियों से आकाशवाणी चैनल अरुण एफएम पर मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और आरजे याजू आपके साथ। दोस्तों, आज सुबह जब आंख खुली तो पहला ख्याल क्या आया आपके दिमाग में? वही अलार्म का स्नूज करने या बिस्तर पर लेटकर छत को देखते हुए सोचा कि बस 5 मिनट और मिल जाता तो क्या बात होती। खैर, पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखिए जरा, हमारे ईटानगर की पहाड़ियों पर सुबह की धूप क्या गजब की खिली है। ठंडी ताजा हवा, चिड़िया की चहचहाट और हाथ में एक गरम लाल चाय या कुछ हर्बल टी ही सही। ऐसे प्यारे मौसम में आलसी बन के परे रहने तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी। तो चलिए, बिस्तर छोड़िए, लंबी सांस लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए हमारे बेहद खास प्रोग्राम सुबह सवेरे में। अगले कुछ मिनट सिर्फ आपका और मेरा है और हम बात करेंगे सेहत की, ताजगी की और दिल को छू लेने वाले संगीत की। और दिन की शुरुआत को एकदम मस्त बनाने के लिए सुनते हैं ये कार्यक्रम का पहला नगमा।

दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारा दिमाग पहले से ही दौड़ने लगता है। आज ऑफिस में क्या काम है, बाजार कब जाना है, किड्स को स्कूल के लिए कैसे रेडी करें। लेकिन क्या हमने अपने दिमाग और शरीर को एक दूसरे से बात करने का वक्त दिया? यही काम योगा आता है। योगा कोई मुश्किल आसन या सर के बल खड़े होने का नाम नहीं है। ये बस आपका अपने अंदर जागने का एक जरिया है। बस जमीन पर आराम से बैठिए, पीठ सीधी कीजिए और शुरू कीजिए अनुलोम विलोम या कपालभाति। अगले सिर्फ 10 मिनट तक लंबी गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि कैसे पूरे बदन में नई ताजगी बढ़ रही है। अगर थोड़ा स्ट्रेच करना चाहे तो एक दो राउंड सूर्य नमस्कार लगा लीजिए। तन भी खुश और मन भी शांत। अब थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, तब तक हम सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। योगा से मन तो शांत हो गया, पर अब शरीर के इंजन को थोड़ा वार्म अप भी चाहिए। बात करते हैं अब डेली एक्सरसाइज की। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज के लिए जिम का हैवी सब्सक्रिप्शन चाहिए या महंगे डंबल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ईटानगर की ढालनों पर 20 से 25 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर आइए, वही काफी है। अगर बाहर नहीं जाना तो घर के आंगन में भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स लगा सकते हैं या थोड़े स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। हर रोज 20 मिनट का पसीना आपके दिल को लंबे वक्त तक जवान रखता है और दिन भर के आलस को गायब कर देता है। चलिए थोड़ा बॉडी मूव कीजिए और सुनते हैं एक और लाजवाब गाना जो आपकी सुबह को और रंगीन बना देगा।

दोस्तों, संगीत की मस्ती की बात अब बात आती है सबसे जरूरी हिस्से की, यानी हेल्थ टिप्स। एक्सरसाइज और योगा तभी असर करते हैं जब हम अंदर से अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। तो नोट कीजिए आज के कुछ सिंपल तरीके। सुबह उठते ही सबसे पहले कम से कम एक या दो ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीजिए। ये आपके डाइजेशन को ट्रैक पर लाता है। सुबह का ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी और पौष्टिक होना चाहिए। अंडा, चना, दलिया या जो भी ताजा घर का खाना हो, खाली पेट से निकलना मतलब बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाना। तो ध्यान दीजिएगा, सुबह के पहले आधे घंटे और रात को सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन से दूर रहिए। आंखों और नींद दोनों के लिए ये अमृत जैसा है। उम्मीद है आपका दिन ऊर्जा और मुस्कान से भरा रहेगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। तो ये था दोस्तों आज का कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे आपातानी भाषा में समाचार।

सी आकाशवाणी तनगर चिरोक तन प्रोग्राम तमे मलि बलि कपे जा पसर ननो तन पियो मे ता पतो दो सिरु कपु यु लुकु इन सी दुई वंका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी पी राधाकृष्णन हे सिलो इटानगर हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टूर का पार्ट पा विजिट मकिंदो हला लुकोने हो वाइस प्रेसिडेंट हे अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पेशल सेशन नो आलिन अलोहो एटेन मकिंदो वो असेंबली गैलरी कम म्यूजियम हो मना विजिट मकिंदो हला लुकोने हो मोनियदर नामलो जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम इटानगर होला दोनीपोलो मिशन स्कूल फॉर हियरिंग एंड विजुअली एम्पेयर हो मना विजिट मकिंदो हला लुकोने हो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इटानगर हो आली हो का सिक्योरिटी रीजन पा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कम्प्लीट नो प्लाइजन पा डिक्लेयर मने हला लुकोने हो एडमिनिस्ट्रेशन है वार्न मना लुने एनी अनऑथोराइज ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स ला सिमिलर एरियल डिवाइसेस यूज मन अथामी वार्निंग विला ऑर्डर बिन मिका तागो निपक खिला रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ का अंदर हो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन में लादो पमुची हला लुने हो ऑथोरिटीज सिविक क्लीन अप ला लेमोसा एनएच 415 अतामी इम्प्रूव मुदो पपोकस मुलादो हला लुकोने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू इनको नालो हो स्टेट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन हब कम होस्टेल में नाहरलगन गंदा हो मको हाबिला आने हला लुकोने हो सका एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन हब कम होस्टेल में फार्मर्स अजियापे मुने आतंका वन स्टॉप फैसिलिटी पा दोला हो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस स्कीम ला विजिटिंग फार्मर्स आतंका एकोमोडेशन पा प्रोवाइड मुदो पा एक्सपेक्ट मुदो हला लुकोने हो ओकेजन अलो हो चीफ मिनिस्टर हु मत्स्य ई बाहिनी व्हीकल ला ई रिक्शा में प्लेग ऑफ मुविने हला लुकोने होसिमी का मुविने का एम है पीस बेंडिंग ला मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट मला हो क्लीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में स्मॉल ट्रेडर्स ला पीस फार्मर्स आतंपा मने हला लुकोने होगरापा कालो हो खंडू हु एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025-35 हॉर्टिकल्चर पॉलिसी 2025-35 ला एपिकल्चर एंड हनी पॉलिसी 2025-35 मलामी रिलीज मुबने हला लुकोने हो ऑकेशन अलो हो मो लुने अरुणाचल हो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ला हनी प्रोडक्शन पा अनो पोटेंशियल दो हो हला लुकोने होसे का पॉलिसीज आता है पोटेंशियल में बेटर लाइवलीहुड्स स्ट्रोंगर रूरल इकोनॉमिक्स ला प्रोस्पेरस अरुणाचल पा टर्न मकिंदो हला लुकोने डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेस नावांग गुंगते है होम मिनिस्टर ममंग नातुंगमी इनिकुन अलो हो ग्योला दुकुआ को दूला मुने हला लुकोने हो का दुकुन दूली हो मोलो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेस डिपार्टमेंट में मोलो का फोकस में एफिशिएंसी प्रिपेयरनेस ला पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एनहेंस मुदोपा तैलु मोताका सला मुने हला लुकोने ओगरापा मोलू फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2026 का पुगो हो मना डिस्कस

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपातकालीन भाषा में समाचार आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे सुबह के बेहद खास सफर में। दोस्तों, चाय का कप हाथ में लीजिए क्योंकि अगला कुछ वक्त होने वाला है बेहद दिलचस्प। हम चलेंगे वक्त के पन्नों पर, देखेंगे कि आज की तारीख यानी 8 सितंबर ने दुनिया और हमारे देश को क्या दिया है, और साथ ही देखेंगे हमारी राजधानी और स्टेट की ताजा खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट के इस प्यारे से गाने के साथ।

संगीत की इस खूबसूरत शुरुआत के बाद चलिए खोलते हैं दुनिया के इतिहास की किताब और देखते हैं आज के दिन यानी 8 सितंबर को दुनिया में क्या बड़ा हुआ था। दोस्तों 1504 में फ्लोरेंस इटली में मशहूर कलाकार मिशेलएंजेलो ने अपनी विश्वाख्यात मूर्ति स्टैच्यू ऑफ डेविड को पहली बार लोगों के सामने पेश किया था। कला की दुनिया में ये हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। 1522 में स्पेनिश नेविगेटर जुआन सेबेस्टियन एल्केनो का जहाज वापस स्पेन लौटा और इसी के साथ मानव इतिहास में पहली बार किसी ने पूरी दुनिया का चक्कर सफलतापूर्वक पूरा किया। वहीं 1966 में साइंस फिक्शन की दुनिया बदल गई जब टीवी स्क्रीन पर पहली बार लेजेंडरी सीरीज स्टार ट्रेक का पहला एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ था। 1967 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाना शुरू किया ताकि दुनिया को ये याद रहे कि पढ़ाई लिखाई के बदलाव की असली ताकत क्या है। दोस्तों सोचिए जरा किताबों और अक्षरों की ताकत कितनी बड़ी होती है। आज जब हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे मना रहे हैं तो क्या हम अपने आसपास किसी एक व्यक्ति को कुछ नया सिखाने या पढ़ाने का संकल्प ले सकते हैं? एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे अपने हिंदुस्तान के पन्नों में आज का दिन क्या कहते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक और मीठा सा गाना।

दोस्तों, जब बात सुर और संगीत की आती है तो आज का दिन हमारे देश के लिए और भी गहरा हो जाता है। आइए देखते हैं भारत के इतिहास के कुछ प्रमुख दिन। हमारे नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश के गौरव भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्मदिन है आज, जो कि 1926 में हुआ था। उनके गीतों ने ब्रह्मपुत्र के लहरों से लेकर दिल्ली और देश के हर कोने में भाईचारा का संदेश दिया। 1933 में भारतीय संगीत की आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का जन्मदिन भी आज ही हुआ था। उनकी आवाज ने कई दशकों तक हर हिंदुस्तानी के दिल को झूमा दिया। डोलापोस के पास भारत चीन सीमा पर तनाव और इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुए थे, जो 1962 के युद्ध के शुरुआती मोड़ के रूप में दर्ज है। वहीं 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ का रिनोवेशन पूरा होने के बाद नए रूप कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। वैसे देखा जाए तो 8 सितंबर हमारे संगीत जगत के दो महान सितारों भूपेन दा और आशा जी की देन है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उनके गाने सुनिए, दिल को वही सुकून मिलता है। संगीत सच में दिल का दवा है, वैसे मानते हैं ना आप भी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, फिर आएंगे हमारे स्टेट की अहम खबरों पर।

दोस्तों, संगीत के सफर के बाद अब वक्त है हमारे अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश की ताजा और जरूरी खबरों का, जो अरुणाचल टाइम्स की न्यूज़पेपर में छपी है। डीए इम्पोज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन गैदरिंग टू अलाउ पीएफआर स्टडी। अपर सियांग में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक गैदरिंग पर पाबंदी लगाई है ताकि सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के प्रिलिमिनरी फैसिलिटी रिपोर्ट का स्टडी काम बिना किसी बड़ा के पूरा हो सके। एपीएससी पीसीआर अर्जेस पुलिस टू कंडक्ट इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इनटू नामसाई ट्रैफिकिंग केस। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि नामसाई के रिसेंट ट्रैफिकिंग मामले में गहरी और कड़ी जांच की जाए ताकि दोषियों को बख्शा न जाए। एसटीस कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन डे कॉमेमोरेटेड। राज्य भर में शेड्यूल ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन डे मनाया गया, जिसमें आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों और उनके सम्मान पर चर्चा की गई। एसोसिएशन स्टेक होल्डर्स प्लेज टू प्रोटेक्ट फ्लोरा फाउना। पर्यावरण को बचाने के लिए लोकल एसोसिएशन और स्टेक होल्डर्स ने एक साथ मिलकर संकल्प लिया है कि हमारे जंगल, पेड़ पौधे और वन्यजीव का संरक्षण हर हाल में किया जाएगा। आईसीएआर बासर कंडक्ट डायग्नोस्टिक फील्ड विजिट। आईसीएआर बासर के कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने डायग्नोस्टिक फील्ड विजिट की है ताकि किसानों की फसलों की बीमारियों और उनके समाधान

पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दुनिया जहां जहां की बातें, संगीत की ताजगी और हमारे राज्य की ग्राउंड अपडेट्स। खबरों से जुड़िए पर मन को शांत रखिए, अपने काम में 100% दीजिए और मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लेती हूं आपसे छोटा सा ब्रेक, आप सुनते रहिए आपका अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM। दोस्तों इसके बाद अब आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

नाचो कॉन्स्टेंसी गे कोदोका यूथ एसोसिएशन गला नामपम निगाम गा सीनियर मेंबर्स गांव बुरा ओ ददंग डिस्ट्रिक्ट लो फ्लोरा ओ फौना सम मकी मेंबर माब अलव का चंगला दिगे संग प्रोटेक्शन ला दिगे संग दुखुब गामंग तुलक मिस गेन खुबला फा दुखु सोग अरालो अतो अके अतो अतु गे नामपम लो मोरू गे सनंग समेन सम मकी मा दुखुब ओक्चे चकर मा दुब नामपम दे दिलो साइन बोर्ड गा तिंकर दुखुब ला मे फालेन दुखु सम इसुंगुई गा का ऐसा बोर कर लम कीमा तो खूब रा मैं फादर दुखो मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर लोग बैंक पापु नाम गए अरुणाचल प्रदेश के पापम पारे डिस्ट्रिक्ट गए बैंक तकला इरिंगुला अखिन डिस्ट्रिक्ट गुलो वेदर रिपोर्ट गए येलो अलर्ट गु खातम दुखूला मैं फालें दुखो सो गए डिस्ट्रिक्ट दे दल लो मौके गुना लो दोगुम दोरियाक अंग तकला ये दोंग अच्छा लब हो लगते दूला मैं फालें दुखो सरुगे तागिन गांव यूनियन बिन नबसंका है बो

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तागिन भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम है और मैं हूँ आपकी अपनी साथी आरजे याजी। दोस्तों एक बात सोचिए, दौर बदल जाते हैं, पसंद बदल जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे शहर की सड़कें और मकान भी बदल जाते हैं, पर कुछ आवाजें ऐसी होती है जो जमाने की गर्द में कभी पुरानी नहीं होती। रफी साहब की वो मीठी हंसी, किशोर दा की शरारत, मुकेश जी का दर्द और लता दीदी का रूहानी तानसेन, ये संगीत नहीं हमारी यादों का एक महफूज आशियाना है। वक्त कितना भी आगे निकल जाए, पर जब पुराने गीतों का रेडियो पर सुर चिढ़ता है तो दिल एक पल के लिए वही थम जाता है। इसे मीठी सी ठंडक और यादों के तराने लेकर मैं हाजिर हूँ आपका सबसे अजीज प्रोग्राम सदाबहार। अगले कुछ वक्त हम पुराने सुनहरे दौर में गुजारेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज बादल और हवाएं हमारे अरुणाचल के साथ क्या खेल खेल रही है, यानी संगीत के संग पूरा विरपतीत। तो आइए यादों की खिड़की खोलते हैं और सुनते हैं गोल्डन एरा का ये सदाबहार नगमा।

दोस्तों अब बात करते हैं मौसम की मिजाज की। अगर आप आज ईटानगर में बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं, चाहे ऑफिस जाना हो, गंगा मार्केट का चक्कर लगाना हो या फिर बच्चों के साथ कोई काम, तो छतरी और रेनकोट को बगल में रखना मत भूलिएगा। आईएमडी सेंटर ईटानगर के ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक आज हमारी राजधानी ईटानगर और आसपास के पपुमपारे इलाके में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के दौरान एक या दो दफा तेज बौछारे या थंडर शावर देखने को मिल सकते हैं। कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिकॉर्ड किए जाने का असर है। आज ईटानगर का अधिकतम तापमान लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: मुकेश जी की आवाज और बारिश का जिक्र, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ईटानगर ही नहीं, पूरे राज्य भर में मौसम का रूप इस वक्त काफी बदला हुआ है। आईएमडी और अरुणाचल प्रदेश के स्टेट लेवल वेदर फोरकास्ट और सिनॉप्टिक एनालिसिस पर एक गहरी नजर डालते हैं। आईएमडी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते राज्य के कई जिलों में वाइडस्प्रेड रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म की वार्निंग जारी की गई है। कुरुंकुमे, लेपरादा, लोअर सियांग, तिरप और लोंगडिंग जैसे जिलों में

आकाशीय बिजली और गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तवांग, वेस्ट कामेंग और कामले के पहाड़ी रुख पर भी रुक रुक कर ड्रिजल और फॉग का असर बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे बंदरदेवा, होलोंगी, पासीघाट या आलो रूट पर निकल रहे हैं, तो कृपया गाड़ी ध्यान से चलाइए। पहाड़ों में तेज बौछारें की वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है और मड स्लिप्स या स्मॉल लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। एसडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सेफ्टी गाइडलाइंस का जरूर पालन करें। सुरक्षा पहले और मन की शांति के लिए संगीत हमेशा आपके साथ है, तो लीजिए इस कार्यक्रम का आखिरी गाना।

दोस्तों, लता दीदी की आवाज़ सुनकर बस लगता है कि वक्त यही ठहर जाए। यही तो जादू है हमारे सदाबहार संगीत का। चाहे मौसम कैसा भी हो, ये मन को हमेशा ठंडक और सुकून दे जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मौसम की हर करवट पर नजर रखिए, छतरी साथ रखिए और अपनी सुबह को बेहतरीन यादों के साथ आगे बढ़ाइए। मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, पर आपका और हमारा सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। आप सुनते रहिए आपका अपना सबसे भरोसेमंद स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है, जहां

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साड़न, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।

0: श्री बेटन ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटन ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में दो तिहाई बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटन ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव

0: भाव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले दो दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
1: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपद पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हथियारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हुरमुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने

वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग से प्रसारित किए गए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। हमारे बेहद चहेते और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। दोस्तों एक बात सोचिए, बचपन में जब हम पहली बार उंगली पकड़कर ए फॉर एप्पल या का से कमल लिखना सीख रहे थे, तो क्या हमने सोचा था कि आधी तिरछी लकीरें हमारी जिंदगी को किस मोड़ पर ले आएंगी? मुझे याद है हमारे घरों में अक्सर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे, पोशाक तो पुरानी हो सकती है पर ज्ञान हमेशा नया होना चाहिए। अक्सर सिर्फ किताब के पन्नों पर छपा हुआ इंक नहीं होते दोस्तों, ये एक ऐसी चाबी है जो बन किस्मत के दरवाजे खोल देती है। किसी ट्रेन का साइन बोर्ड पढ़ना हो, बैंक में जाकर अपना फॉर्म खुद भरना हो, या डिजिटल दौर में अपने फोन पर आई जरूरी जानकारी को समझना हो, ये सब कुछ लिटरेसी यानी साक्षरता की बदौलत ही संभव है। और आज 8 सितंबर को पूरी दुनिया इसी ताकत का जश्न मना रही है। आज है इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो चलिए हेलो ईटानगर के इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे गीत के साथ।

दोस्तों आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं इस दिन के पीछे की कहानी को। साल 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में पूरी दुनिया के शिक्षा मंत्रियों की एक अहम कांग्रेस हुई थी। वही पहली बार विश्व स्तर पर ये बात रखी गई कि साक्षरता सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं बल्कि गरीबी मिटाने और विकास का सबसे बड़ा हथियार है। अगले ही साल 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने रस्मी तौर पर घोषणा की कि हर साल 8 सितंबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाएगा और पहली बार इसे 1967 में आम लोगों के बीच मनाया गया। पहले समय में लोग सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ उनके लिए है जिनको सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। साक्षरता कोई दान या प्रिविलेज नहीं है दोस्तों, ये हर इंसान का मौलिक अधिकार और ह्यूमन डिग्निटी का हिस्सा है। आज के जमाने में लिटरेसी का मतलब सिर्फ अपना नाम साइन कर लेना नहीं है। आज हम डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी और हेल्थ लिटरेसी की बात करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेफली करना आता है, फेक न्यूज और सही इन्फॉर्मेशन में फर्क समझ आता है, तो आप इस 21st सेंचुरी में सच्चे अर्थ में साक्षर है। शिक्षा की इस रोशनी को अपने अंदर महसूस कीजिए और आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कुछ पाने की आस आस, कोई अरमान हो जो खास खास, हर इंसान के अरमान तभी पूरे होते हैं जब उसके पास ज्ञान का हथियार हो। दोस्तों, इस साल के इंटरनेशनल लिटरेसी डे का सबसे बड़ा संदेश ये है कि एजुकेशन इंक्लूसिव और एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि शिक्षा तक पहुंच हर किसी की हो, चाहे कोई शहर में रहता हो या हमारे किसी दूर दराज के पहाड़ी गांव में, चाहे कोई अमीर परिवार से हो या

खेती किसान का बेटा या बेटी हो, चाहे कोई बिल्कुल ठीक ठाक हो या फिजिकली चैलेंज हो, अगर हमारे समाज की आखिरी व्यक्ति भी स्कूल या डिजिटल ज्ञान से छूट रहा है तो हमारा विकास अधूरा है। और जब हम अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये बात और भी जरूरी हो जाती है। हमारे यहाँ पहाड़ में लंबी डालने हैं और मानसून के दौरान रास्ते बंद हो जाते हैं। कई बार गांव से स्कूल तक का सफर घंटों का होता है, लेकिन हमारे बच्चों का जज्बे देखिए, उनकी आंखों में आगे बढ़ने की जो चमक है उसे बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अरुणाचल की खूबसूरती हमारी बोलियां हैं, जैसे कि कालो, निशी, अपतानी, तागिन आदि, मोम्पा, मिशमी, वांगचो, नोक्ते और कितने सारे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जब मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा दी जा रही है तो बच्चे कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ रहे हैं। शिक्षा ऐसी है जो हमारी परंपरा और संस्कृति को आधार दे, ना कि उसे अलग करे। हमारे राज्य में बेटियों की शिक्षा पर पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो सच में काबिले तारीफ है। बेटी पढ़ेगी तो पूरा परिवार और पूरा गांव आगे बढ़ेगा। तो चलिए संगीत के तार को आगे छोड़ते हैं और सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: दोस्तों बूंद बूंद से सागर बनता है और तारा तारा मिलकर आकाश सजाते हैं। तो शो की आखिरी हिस्से में मैं आपसे एक छोटा सा विश्वास मांगने चाहती हूँ। आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर हम सब एक अहम संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई ऐसी बुजुर्ग है जो साइन करना नहीं जानते, उन्हें आराम से अपना नाम लिखना सिखाइए। उन्हें सिखाइए कि एटीएम कैसे ऑपरेट किया जाता है, या मोबाइल पर जरूरी मैसेज कैसे पढ़े जाते हैं, या फिर आप उसे गूगल पे या फिर फोन पे भी करना सिखा सकते हैं। बच्चों की पुरानी किताबें, नोटबुक्स या कहानियों की किताबें जो अब आपके काम नहीं है, उन्हें कबाड़ में बेचने की बजाय किसी निजी बच्चे को या लोकल लाइब्रेरी को बेच दीजिए। तो दोस्तों ये था आज का सफर हेलो ईटानगर में। उम्मीद है कि आज की बातें ने आपके दिल में कुछ नए विचारों का बीज जरूर बोया होगा। आकाशवाणी ईटानगर का रन एफएम 103.1 MHz से अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का

0: लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के तीन महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में ली गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की है। श्री सिंह ने बताया कि मुलाकात दूतावास के संरक्षण में अखिल भारतीय संचालन समिति के एक कार्यक्रम में हुई। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत, अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अमरीका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमी कंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉक्टर यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का मार्ग खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित ना रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न स्रोतों से ज्ञान हासिल करने के महत्व पर बल दिया है। संस्कृत श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी कई फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को हर क्षेत्र से उपयोगी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

से प्रसारित किए गए राष्ट्रीय समाचार आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे जिंदगी में कितनी भी बागडोर क्यों ना हो, जैसे ही कानों में किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की खबर, सेट की स्पाइसी गॉसिप्स या बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने की बात आती है, हम सबके कान एकदम खड़े हो जाते हैं। आखिर सिनेमा हमारे हिंदुस्तान के खून में जो दौड़ता है। सुबह की चाय ठंडी हो सकती है पर माया नगरी मुंबई का ये तंदूर हमेशा गर्म रहता है। कहीं करोड़पति बॉक्स ऑफिस का डंका बच रहा है, कहीं ओटीटी पर नए ट्विस्ट दिमाग हिला रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो हर घंटे एक नई कंट्रोवर्सी ट्रेंड करती रहती है। तो बस अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि मैं लेकर हाजिर हूं आपके सबसे चटपटा और मजेदार शो फिल्मी कपशप। अगले कुछ वक्त हम सिर्फ सिल्वर स्क्रीन, ओटीटी और सितारों की जिंदगी के नाम करेंगे। तो चलिए इस फिल्मी सफर की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त चार्टबस्टर के साथ।

चलिए सबसे पहले बात करते हैं टिकट खिड़की यानी बॉक्स ऑफिस की, जहां इस वक्त जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। पहली बात करते हैं थिएटर में उतरी मिर्जापुर द मूवी। पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया ने बड़े पर्दे पर आते ही ऐसे दहाड़ मारी है कि फिल्म ने अपने पहले 4 दिनों में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है। वर्ल्ड वाइड तो ये आंकड़ा लगभग 132 करोड़ के पार पहुंच चुका है। हर सिनेमा हॉल में सीटियां बज रही है इस फिल्म को लेकर। लेकिन इस तूफान के बीच एक और फिल्म ने ट्रेड पुल किया है, वो है हनुमान अंश। बिना किसी बहुत बड़े सुपरस्टार के ये फिल्म 120 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन पार कर चुकी है। इवन डायरेक्टर आदित्य धार और वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर आकर इसकी तारीफ की है और इसे डिवाइन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बताया है। तो थिएटर्स में इस वक्त फुल ऑन धमाका चल रहा है। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: माँ, अम्पी और मैं हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
1: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
0: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें? यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, संगीत के बाद अब आते हैं फिल्मों के रिव्यू और ग्राउंड रिपोर्ट पर। पहली बात तापसी पन्नू की नई ट्रेलर फिल्म गांधारी की। क्रिटिक्स ने इसे 4 out of 5 स्टार्स दिए हैं। कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने बच्चे के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाती है। तापसी की एक्टिंग एकदम रो और इंटेंस है। अगर आपको ग्रिपिंग ट्रेलर्स पसंद है तो ये फिल्म आपको शुरू से आखिरी फ्रेम तक बांध कर रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ साउथ सेंसेशन यश की मैसिव गैंगस्टर ड्रामा टॉक्सिक के लिए थ्रेड से थोड़ी चिंताजनक खबरें आ रही है। क्रिटिक्स ने यश के स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ तो की है, पर फिल्म का हिंदी वर्जन मंडे टेस्ट में भी 90% से ज्यादा क्रैश हो गया। यहां तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक OTT राइट्स जो पहले 200 करोड़ तक सोचे जा रहे थे, उनकी वैल्यूएशन गिरकर लगभग 30 करोड़ के आसपास आकर अटक गई है। आखिरकार कंटेंट ही किंग होता है दोस्तों। चलिए अब सुनते हैं एक और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक ट्रैक।

दोस्तों मोहब्बत बड़े सुरों के बाद अब रुख करते हैं कंट्रोवर्सी की तरफ। बॉलीवुड दीवा नोरा फतेही इस वक्त एक बड़ी लीगल ट्रबल में फंसी दिख रही है। एक लीडिंग प्राइवेट एविएशन चार्टर कंपनी ने नोरा पर पूरे 3 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस ठोक दिया है। मामला क्या है? दरअसल एक वीडियो में नोरा ने उनके चार्टर एयरक्राफ्ट को आम बोलचाल में टॉय प्लेन या छोटा प्लेन कहकर मजाक उड़ाया था। अब एविएशन कंपनी के आरोप है कि नोरा के इस बयान के बाद उनकी बुकिंग्स में 50-20% की गिरावट आई है और उनकी ब्रांड इमेज खराब हुई है। नोरा की लीगल टीम फिलहाल इस पर जवाब तैयार कर रही है, पर इंटरनेट पर नेटिजन इस पर दो धारा में बांट चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए सुनते हैं ये बीट ड्रॉपिंग गाना। सारे गा

0: 춤까?
1: 200 कंट्रोवर्सी का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ है। मिर्जापुर द मूवी के सुपरहिट ट्रैक शूरवीर को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। राजस्थानी फोक फ्यूजन आर्टिस्ट रेपरिया बालम ने ओपन प्लेटफॉर्म पर मेकर्स पर आरोप लगाए कि उनके गाने का क्रेडिट उन्हें बिना पूरी परमिशन के यूज किया गया है और ये राजस्थानी कल्चर का अपमान है। हालांकि अब म्यूजिक लेबल ट्रॉपर रिकॉर्ड्स ने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाकर क्लैरिफिकेशन दिया है कि सभी लीगल लाइसेंसिंग पूरी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई का हिस्टोरिकल सिंगल स्क्रीन थिएटर गेयटी गैलेक्सी अचानक बंद होने की खबर आई। अफवाहें उड़ी कि लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, पर थिएटर ओनर मनोज देसाई ने आगे आकर साफ किया है कि थिएटर के मेन केबल्स जल गए थे और टेक्निकल रिपेयर के तुरंत बाद ये आम जनता के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। तो सिनेमा लवर्स आप चैन की सांस ले सकते हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक जो मूड को एकदम चिल कर देगा।

दोस्तों, अगर आप इस वीकेंड घर पर पॉपकॉर्न के साथ सोफा पर लेटकर बिंज वॉच करने का प्लान बना रहे हैं तो नोट कीजिए ओटीटी के सबसे ताजे अपडेट्स के। पंजाब की न्यूयॉर्क क्राइम लैंडस्केप पर बेस्ड इस सीरीज का दूसरा सीजन आते ही छा गया है। यह है कोरा सीजन 2। मोना सिंह ने वरुण सोपती के साथ मिलकर ऐसी पावर पैक एक्टिंग की है कि क्रिटिक्स इसे 4-स्टार रिव्यू दे रहा है। ठंडी हवा, डार्क सस्पेंस और फैमिली ड्रामा ये सीरीज मिस करने वाले बिल्कुल नहीं है। परिणीति चोपड़ा की सीरीज शक ट्रस्ट नो वन, जो कि जियो हॉटस्टार पर है, इस सीरीज के साथ अपना डिजिटल वेब डेब्यू करने जा रही है। ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, जिसमें परिणीति एक कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री को सुलझाती हुई दिख रही है। वही लव स्टोरी स्त्री राधिका आप्टे और अदिति राव हैदरीज टेरर एंटोलॉजी का नया इंस्टॉलमेंट भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आकर ह्यूमन रिलेशनशिप के नए लेयर्स खोल रहा है। चलिए आप सुनते हैं एक और अगला नगमा।

दोस्तों गाने के बाद अब रुख करते हैं सोशल मीडिया के वायरल गलियारों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की। उनकी आने वाली मैसिव फिल्म प्रलय के सेट से एक वीडियो लीक हो गई है जिसमें रणवीर लंबे बालों और एकदम रग्ड रो अवतार में नजर आ रहे हैं। नेटिजन कह रहे हैं कि ये उनका अब तक का सबसे वायलेंट और डेडली रोल होने वाला है। वहीं ग्लोबल पॉप सेंसेशन दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया। उनके रिसेंट मिलान कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन ने टी शर्ट पर उनके नाम के साथ पवित्र शब्द आई के ओंकार लिखवा रखा था। दिलजीत ने स्टेज पर बड़े ही प्यार और तहजीब से फैन को समझाया कि भगवान के पवित्र नाम को किसी इंसान के नाम के साथ ना जोड़े। इंटरनेट पर लोग उनकी इस विनम्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और एनर्जेटिक गाना।

दोस्तों, और अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर। क्या है आने वाला समय का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट? संजय लीला बंसाली की मल्टी स्टारर फिल्म लव एंड वॉर, जिसमें हम देख पाएंगे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल के टीजर का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है। ट्रेड रिपोर्ट्स कहते हैं कि इसका फर्स्ट लुक अब नीतीश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण के टीजर रिलीज के साथ अटैच करके लगाया जाएगा। वही वर्सेटाइल एक्टर मनोज बाजपेयी एक नए इतिहास

क्लासिक अवतार में नजर आने वाले हैं। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की अगली फिल्म में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी का रोल प्ले कर रहे हैं और उनका लुक रिवील होते ही सभी दंग रह गए हैं। बॉलीवुड हर पल नया रंग बदल रहा है और हम आपको हर खबर से अपडेट रखेंगे। चलिए सुनते हैं हमारे शो का आखिरी गाना।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल

0: फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार को और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघे ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत, अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉक्टर यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का मार्ग खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न स्रोतों से ज्ञान हासिल करने के महत्व पर बल दिया। संस्कृत श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी कई फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को हर क्षेत्र से उपयोगी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और खेलों में अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेंगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया से और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम इराक से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. More from our correspondent.
2: A major highlight of PM's visit will be the dedication of 3 key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full completion and operationalization of the Freight Corridor network. The Prime Minister will also flag off the freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargam and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail network. In addition, Mr. Modi will also lay the foundation stone for 3 railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees and 3 national highway projects costing

वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित किए गए समाचार आकाशवाणी अरुण एफएम पर। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। दोस्तों, सुबह का ये आखिरी पहर बड़ा अजीब सा होता है। घड़ी की सुइयां आगे निकल रही होती है, रोजमर्रा के काम लगभग शुरू हो चुके होते हैं और

आज के दिन पूरी करनी है, लेकिन इस बागडोर के बीच कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक पल के लिए सब ठहरा देती है, जैसे पोस्ट बॉक्स ऑफिस में आया हुआ कोई पुराना खत या रेडियो पर अचानक बज उठा अपना मनपसंद नगमा। रेडियो ऑन डिमांड दरअसल हमारा नहीं, पूरी तरह आपका शो है। ये वो हिस्सा है जहां फैसला आपका होता है और जरिए हम बनते हैं। झारखंड से छोटे से कस्बे से लेकर कार्बी अंगलोंग और आसाम की वादियों तक आपने जो फरमाइशें हम तक पहुंचाई है, उन्हें अब हवाओं में घोलने का वक्त आ गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के खोलते हैं आपके मैसेज का सिलसिला और शुरू करते हैं सुबह की ट्रांसमिशन का ये आखिरी दौर। पहली चिट्ठी काफी दूर से आई है, चाईबासा झारखंड से लिखा है शिव गोप जी ने और उनके पूरे परिवार ने। उन्होंने याद किया है 1980 की फिल्म बंदिश के एक बेहद खूबसूरत गीत को। जब दो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं तो घर के छोटे मोटे आवाजों में भी बस इंतजार ही सुनाई देता है। शिवाजी और उनके पूरे परिवार की पसंद पर सुनिए ये मधुर गीत।

कंगना की खक कनक और वो सादगी 80 के दशक के फिल्मी गीतों में एक अजीब सा तहरा हुआ करता था, जो आज के फास्ट फेस संगीत में थोड़ा कम देखने को मिलता है। शिवा गोप जी और चाईबासा में बैठे उनके पूरे परिवार का शुक्रिया इस दिलकश शुरुआत के लिए। अगला मैसेज आया है कर्बी अंगलोंग के लंखनसम से, तेंचन क्रो और सरलो जी ने हमें मैसेज किया है। इनका दिल ठहरा है 90s के शुरुआती दौर का एक मेलोडिक रोमांटिक ट्रैक पर। फिल्म थी आई मिलन की रात, साल 1991। नदीम श्रावण के संगीत ने उस दौर में हर रेडियो सेट पर राज किया था। टेंशन जी और सरलो जी, आपकी सुबह को और खूबसूरत बनाते हुए पेश है आपकी फरमाइश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लंकन सम की शांत पहाड़ियों में बैठकर जब ये धुन बज रही होगी तो यकीनन मौसम और गहरा हो गया होगा। टेंशन करो और सर लो। उम्मीद है आप दोनों को अपनी पसंद हवाओं में सुनकर उतनी ही सुकून मिला होगा जितना हमें इसे चलाने में मिला। तो दोस्तों, आप चलते हैं असम की तरफ। सुनीता बसुमतारी जी का संदेश मिला है। उन्होंने एक बेहद पुरानी और प्यारी सी गजल नुमा कंपोजिशन चुनी है, खिलके कली। ऐसे गीत आमतौर पर रोज सुनने को नहीं मिलते। इन्हें वही लोग ढूंढते हैं जो लफ्जों के पीछे का वजन समझते हैं। सुनीता जी, आपकी नाजुक सी पसंद पर ये गीत सीधे स्टूडियो से आपके नाम।

0: उत्तर पूर्व में स्थित हरा भरा प्रांत असम। असम के लोक संगीत की सुरभि विश्व भर में फैलाने का हमारा पहला प्रयास है आया बिहू झूम के। आइए आप भी झूम के बिहू के रंग में रंग जाइए।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: इस गाने में जो एक एक लफ्ज में जो ठहराव था वो मन को एकदम शांत कर देता है। सुनीता जी, आपकी चॉइस सच में बताती है कि आप संगीत को कितनी बारीकी से सुनती हैं। तो चलिए, आसाम से अगली मैसेज भेजा है प्रिया बोरा ने। उन्होंने 1993 की फिल्म साहिबान का एक गीत रिक्वेस्ट किया है। इस फिल्म का संगीत शिव हरि ने दिया था और उनकी दुआओं में क्लासिकल तर्ज के साथ पहाड़ी संगीत की जो मिठास होती है वो लाजवाब है। रिश्तों की बंधनों और शर्तों से परे ये गीत सीधे दिल से निकलता है। प्रिया, आपके फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, बांसुरी की वो शुरुआती तान और गीत की रॉ ऑनेस्टी, शिव हरी ने इस एल्बम में सच में कमाल का काम किया था। प्रिया, इस बेहतरीन ट्रैक को याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब चलते हैं गोलाघाट असम। यहां से एक साथ तीन दोस्तों ने मैसेज किया है, रोमेश, रूनू और लकी, जो कि हमारे रेगुलर लिसनर है। इन्होंने ये गाना अपने सभी दोस्तों के नाम डेडिकेट किया है। फिल्म थी 1963 की भरोसा, जिसमें गुरुदत्त साहब थे, रवि साहब का संगीत और मुकेश जी की आवाज में जब मिलती है तो गीत बस संगीत नहीं रहता, एक दास्तान बन जाता है। दोस्ती के नाम गोलाघाट की इन दोस्तों की पसंद, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, अब और एक फरमाइश जो संगीत के शौकीन के लिए किसी किताब जैसी है, कार्बी अंगलोंग से गिरन तेरोन जी ने हमें मैसेज किया है। फिल्म थी गुलजार साहब की आंधी, आर दी बर्मन का संगीत और लता किशोर कुमार और लता मंगेशकर की जुगलबंदी और गुलजार की बोल, जो कहते हैं कि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, बस चलते रहने के लिए बने होते हैं। गिरेन जी, आपकी इस मच्योर और बेहद पसंद पर ये खूबसूरत ट्रैक।

दोस्तों, गुलजार साहब के लफ्जों का ये जादू ऐसा है कि दिल चाहता है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, लेकिन घड़ी की सुई किसी के लिए नहीं रुकती और हमारे सुबह के ट्रांसमिशन का वक्त अब यहीं पर खत्म हो रहा है। जिन दोस्तों की मैसेजेस और फरमाइश आज वक्त की कमी के चलते हम शामिल नहीं कर पाए, उनसे बस यही कहूंगी कि निराश बिल्कुल मत होइए। आपकी मैसेजेस हमें मिल चुकी हैं और कल तक इसी वक्त इसी ट्रांसमिशन में हम बची हुई तमाम फरमाइशों को पहली ही प्ले कर देंगे। तो दोस्तों, ये था कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा यह संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज की इस पहले प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीते में मौजूद थे मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता विशु शर्मा। दोस्तों, कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा, अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे नानस के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिम में समर्पित माल ढुलियारे गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। इस दौरान रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के

रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत तथा सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1986 को आम सभा के 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दिल में एक नई उमंग और दिन की एक खूबसूरत शुरुआत। कहते हैं मुस्कुराहट वो छोटी सी चाबी है जो हर किसी के दिल के दरवाजे खोल दे। A very happy and warm morning to each and every lovely listeners right now। सुबह के 11:10 हो चुके हैं और आपके फेवरेट स्टेशन पर स्टार्ट हो चुका है आपका सेकेंड ट्रांसमिशन। दोस्तों अभी तक आप हमारी सुपर टैलेंटेड और प्यारे आरजे याजू नादा के साथ जुड़े हुए थे उनके अमेजिंग सोर्स और ऑसम प्लेलिस्ट के साथ। A huge shout out to आरजे याजू नादा। और अब यहां से आगे का सफर चलेगा मेरे यानी आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास के साथ। अगले कुछ पलों में हम लेके आने वाले हैं आपके फेवरेट हिट्स, दिलचस्प बातें और थोड़ी सी देर सारी मस्ती। तो बस रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए और इसी स्टेशन पर बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम यहां सुनाएंगे आपको कुछ देर सारी खूबसूरत नगमे। तो जी दोस्तों बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को आज की इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद

में सहित प्रसारण निष्पादक गेयर एते और इंजीनियर ऑन ड्यूटी पे है नंद कुमार। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारा शो कार्यक्रम फिल्मी लहर। लीजिए दोस्तों पे से ये बेहतरीन नगमा इस शो का सबसे पहला गाना आप सबके लिए, ऑल द वे फ्रॉम अरुण FM 103.1 MHz।

नहीं, बात करना उसके बारे में कुछ नहीं। हमारा आधा लाइफ निकल गया उसका पीछा करते करते। बर्फी नहीं होता ना तो हम आज पुलिस से एसपी बन के रिटायर करता। अभी हम होमोपैथी की पूड़ी बेचता है।

0: जगह बहुत प्यार बढ़ता था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। तभी तो उसके इतने चाहने वाले थे।
1: बचपन का यार था मेरा, मुंह का पेच लड़ाया करते थे हम। वो गूंगा बहरा था लेकिन बहुत आकरू था। उसका साथ एक प्रॉब्लम था, वो सोचते लोग उसके छोड़ के चले जाएंगे।

0: बोले तो
1: हाट हाट
0: हवा यार सौदा सौदा
1: ओहो
2: दोनों डील कर सील
1: टाइट वेरी टाइट।

और श्रोता दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम फिल्मी लहर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। और अब शुरू होगा दोस्तों द सो वेस्टर्न मेलोडीज़।

0: हाँ जी दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से शुरू होगा कार्यक्रम गजल के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए रोन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन

उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गजल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल। कल 14वीं की रात थी, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात।

हाँ जी श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम गजल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम में जितनी भी गजल आपने सुने, आप सबको आप सबने बेहद इंजॉय किया उन गजलों को।

0: ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज है। प्रस्तुत है वीकली इन्फोटेनिंग प्रोग्राम आज के मेहमान। आज की दुनिया में सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि हम खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे सामने लाते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस आपके बोलने से पहले ही आपके बारे में बहुत कुछ कह देती है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातों पर आज हम बातें करेंगे हमारे आज के मेहमान इमेज कंसल्टेंट, कॉन्फिडेंस कोच, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट श्री चिसांग देवरी के साथ। तो चलिए जानते हैं चिसांग देवरी की जर्नी, उनकी सोच और वो बातें जो युवाओं को अपनी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। चिसांग जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ के अपने प्रोफेशन के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज आई थिंक इमेज कंसल्टेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो अरुणाचल में अभी तक इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए लोगों को इस बारे में इतना नहीं पता। तो आई थिंक इस प्रोग्राम के जरिए बहुत लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि इमेज मैनेजमेंट क्या होता है एंड आप इमेज कंसल्टेंट का इस्तेमाल, उनका सर्विस आप कैसे ले सकते।
0: तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप इमेज कंसल्टेंट को किस तरह से बताएंगे?
1: देखिए, अगर इमेज कंसल्टेंट को अगर मुझे बहुत आसान भाषा में बताना है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसे कि जो वर्ड इटसेल्फ आपको कहता है इमेज, तो इमेज कंसल्टेंट इमेज के साथ काम करता है। अगर आप पूछोगे कि अच्छा इमेज क्या है, तो इस चीज को मैं नॉर्मल टर्म्स पे कहूं तो मैं बोलूंगा कि इमेज का मतलब आप जब किसी को देखते हो तो आपका क्या इंप्रेशन बनता है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या इमेज कंसल्टिंग स्टाइलिंग है? नहीं, इमेज कंसल्टिंग स्टाइलिंग नहीं है। तो इमेज कंसल्टिंग बेसिकली आपका तीन पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उस पिलर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अल्फाबेट ए बी सी। ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। तो देखिए, ये जो तीन पिलर्स है, अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ये तीनों को एक इमेज कंसल्टेंट टेक केयर करता है। लेकिन ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा वास्ट है, तो नॉट नेसेसरीली आपको हर इमेज कंसल्टेंट हर एक पिलर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। कई होता है कि you know, उनका स्पेशलिटी होता है कॉन्फिडेंस, कई होता है उनका स्पेशलिटी कम्युनिकेशन, किसी का अपीयरेंस होता है। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा इमेज कंसल्टेंट कौन से फील्ड पे वो स्पेशलाइज्ड है और वो उसी फील्ड पे काम करते हैं।
0: तो बेसिकली नॉर्मल वे में जब सोचते हैं तो इमेज की बात करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि जब हम कपड़े किस तरह से पहनते हैं, किस तरह से फैशन को फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या अंतर?
1: तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अच्छा इमेज कंसल्टेंट का मतलब फैशन होता होगा, तो लोगों को लगता है कि अच्छा मुझे तो फैशन का जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक स्टाइलिस्ट और एक इमेज कंसल्टेंट में बहुत फर्क है। स्टाइलिस्ट जो होता है उनको आप बोल सकते हो कि हाँ उनको फैशन के साथ वो काम करते हैं, वो लोगों के फैशन स्टेटमेंट को बढ़ाने में काम करता है। इमेज कंसल्टेंट डजंट नेसेसरीली डू दैट। आपका जो इमेज कंसल्टेंट रहता है वो इमेज के साथ काम करता है। जब मैं बोलता हूँ इमेज, तो इमेज क्या है, तो अब मुझे थोड़ा एक साइकोलॉजी के टर्म्स पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने एक मौका दीजिए, ताकि हमारे जो लिसनर्स है उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि होता क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इम्प्रेशन जो होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन हम कहते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है लोगों को फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना?
0: कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही इम्प्रेशन बैठ जाते हैं।
1: एग्जैक्टली, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने में लोगों को विद इन 7 सेकंड्स आप जब किसी को देखते हो तो एक इम्प्रेशन पड़ जाता है। अभी आप कह सकते हो कि आई डोंट केयर, you know, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं लोगों के बारे में क्या सोच रहा हूं। या तो आप ये कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं तो बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूं, मैं किसी को जज नहीं करता हूं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है, राइट, हमारा जो माइंड है वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पे काम करता है
0: जी।
1: अगर हम कॉन्शियस लेवल पे बात करें तो यस, आप कह सकते हो कि नहीं कॉन्शियसली मैं किसी को जज नहीं करता, कॉन्शियसली you know, आप कह सकते हो कि नहीं आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू जज एनीवन। लेकिन आप सबकॉन्शियस लेवल पे आप कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का इंप्रेशन आप बना ही लेते हो, और ये इसीलिए होता है बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर डिजाइंड टू मेक जजमेंट्स। क्यों? बिकॉज आप अगर प्री हिस्टोरिक एरा में जाते हो, जब आप हंटर गैदरर्स थे, तो ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जंगलों में हमें सर्वाइव करने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम जब भी किसी भी चीज को देखते हैं हमें ये परखना पड़ता था विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड कि इज इट सेफ और इज इट डेंजरस, कैन आई अप्रोच।

0: अप्रोच और शुड आई रन अवे। तो ये हमारा एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो, आप चाहे ना भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, ये हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि वी मेक इंप्रेशंस ऑफ पीपल। अब मैंने आपको बोला कि जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए तो आपको 7 सेकंड्स भी नहीं लगता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो इंप्रेशन को चेंज करने में आपको कितना टाइम लगेगा। वेल इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर नॉट दैट पर्सन, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं इंप्रेशन चेंज होता है। एंड दैट ऑल्सो इफ ओनली यू गेट द अपॉर्चुनिटी। कई बार ऐसा होता है कि आप दूर में किसी को देखे, दिमाग में एक छवि बैठ जाता है। आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा, आपको भी लगा होगा कि ओ सिसांग ऐसा होता होगा, सिसांग वैसा होता होगा। आप पर्सनली तो मुझे जानते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक इंप्रेशन बैठा है। फिर चाहे आप जितना भी कोशिश करो कि नहीं मैं किसी का इंप्रेशन नहीं बैठाना चाहता हूं, वो हो ही जाता है। सो हम क्या करते हैं एज एन इमेज कंसल्टेंट, हमारा पूरा पढ़ाई ही इसी बेसिस पे होता है कि हाउ डू वी इंश्योर कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे जो साइंस है, उसका इस्तेमाल करके हाउ डू वी टेक द मैटर इन आर हैंड। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे ही रैंडमली बन जाए, हम फर्स्ट इंप्रेशन को क्यूरेट करने की कोशिश करें, ताकि आपका राइट फर्स्ट इंप्रेशन पड़े, ताकि जो आपका प्रोफेशन है उस पे आप इस साइंस को, फर्स्ट इंप्रेशन वाला साइंस जो है, जो इमेज मैनेजमेंट का साइंस है, उसको इस्तेमाल करके आप इंश्योर करो कि यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एंड यू आर बीइंग सीन द वे यू वांट टू बी सीन। सो दैट इज वेयर इमेज कंसल्टेंट really becomes helpful।
1: जब इमेज कंसल्टेंट की बात करते हैं तो आपने इस करियर को क्यों चुना?
0: So, देखिए मेरे लिए इमेज कंसल्टेंट जो है वो इट्स कम वेरी लेट इन द सेंस, पहले मैं कॉर्पोरेट के लिए काम करता था। मैंने कॉर्पोरेट के लिए करीबन 7 से 8 साल तक मैंने काम किया, बड़े बड़े कंपनीज के साथ मैंने काम किया, लिंक्डइन हो गया, अमेजोन हो गया, HSBC बैंक हो गया। तो वहां पे काम करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या चीज है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। मुझे इस बात का

0: लेट इन द सेंस, पहले मैं कॉर्पोरेट के लिए काम करता था.
1: जी.
0: सो मैंने कॉर्पोरेट के लिए करीबन 7 से 8 साल तक मैंने काम किया. बड़े बड़े कंपनीज के साथ मैंने काम किया, लिंक्डइन हो गया, अमेज़न हो गया, HSBC बैंक हो गया. तो वहां पे काम करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या चीज है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. मुझे इस बात का

0: देखिए स्टाइल तो फैशन वर्ल्ड यू नो हाउ इट चेंजेस, हर 3 महीने में एक नया फैशन आ जाता है और हर एक फैशन आपके साथ जाएगा भी नहीं, क्योंकि जब हम इमेज की बात करते हैं यू नो इट्स एक्चुअली वेरी डीप। यहाँ पे अगर मुझे किसी क्लाइंट के साथ उनका पर्सनैलिटी या इमेज चेंज करना है तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ उनका लाइफ स्टाइल, उनका पर्सनैलिटी को समझ के, उसके बाद हम उनका बॉडी शेप को भी देखते हैं कि आपका बॉडी शेप क्या है, क्या आपके बॉडी शेप में इस तरह के कपड़े फिट आएंगे नहीं आएंगे, विल इट गो वेल विल इट नॉट गो वेल। सो देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग। तो इसीलिए मतलब इमेज इज डिफरेंट, ग्रूमिंग इज डिफरेंट एंड स्टाइलिंग इज डिफरेंट। अगर आपको करना है कि नहीं मुझे स्टाइलिश बनना है तो ठीक है, यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन, बट फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन बीइंग ग्रूम्ड, दैट इज लाइक द बेबी स्टेप। आप पहले ग्रूम तो हो जाइए, उसके बाद लेट्स वर्क ऑन योर स्टाइल पर्सनैलिटी, लेट्स सी कि आपको हम स्टाइलिश कैसे दिखा सकते हैं, बट फर्स्ट लेट्स एड्रेस द बेसिक्स।
1: स्टाइल जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिफर करते हैं, तो बात करते हैं उसके बाद। जैसे कि आपने कहा कि कभी कभी जो लोग है कुछ मिस्टेक कर देते हैं या ग्रूमिंग हुआ, क्या मिस्टेक करते हैं लोग?
0: वेल देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारा सवाल हो सकता है, बट अगर एक चीज मुझे बोलना हो कि बेसिक मिस्टेक
1: जी
0: इज ट्राइंग टू बी समबडी एल्स। आई ऑलवेज से दिस टू पीपल, नेवर बी एनीबॉडी एल्स। जस्ट बिकॉज किसी और ने ऐसा पहना हुआ है मैं भी उसके तरह दिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट वुडन वर्क। क्योंकि अगर वो कपड़े पहन के या उस तरह से ग्रूम करके अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंटली ना आप चलोगे ना कॉन्फिडेंटली बैठोगे, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। सो वाई वुड यू डू दैट टू योर सेल्फ? उससे बहुत ज्यादा बढ़िया है कि फर्स्ट ट्राई एंड डिस्कवर योर ओन स्टाइल, कि आपको क्या पसंद है एंड आपके बॉडी पे क्या जचता है, आपके प्रोफेशन के मुताबिक व्हाट इज ओके व्हाट इज नॉट ओके, एंड देन यू नो कम अप विद योर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल एंड कैरी दैट थ्रू आउट योर लाइफ।
1: तो एज एन इमेज कंसल्टेंट आपके जो क्लाइंट्स आए हैं अभी तक कौन कौन से चीज को लेकर आए, क्या क्या चाहते हैं आपसे?
0: देखिए ज्यादातर लोग आते हैं आइदर कलर एनालिसिस के लिए आ गए या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के लिए आते हैं, विच इज नॉट बैड, क्योंकि एटलीस्ट आ तो रहे हैं यू नो। बट जब भी मेरे साथ मतलब मेरे पास अगर कोई भी आता है, आई टेक इट वेरी सीरियसली टू एजुकेट देम ऑन द ऑप्शंस देयर इज, कि इस चीज का पोटेंशियल कितना है वो बोलने के लिए। देखिए उस वो चीज को बोलने, जैसे कि आज मैं आपके सामने बैठ के इस फील्ड के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ और आपको इस चीज का एहसास दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज में पोटेंशियल कितना है। आप अपना इमेज के साथ वर्क करके गॉड नोज व्हाट काइंड ऑफ हाइट्स यू कैन अचीव इन लाइफ। आपके आसपास आपके पर्सनल लाइफ पे आप इम्पैक्ट ला सकते हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट ला सकते हो। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लोर द पोटेंशियल दैट देयर इज, जो ज्यादातर लोग 80% लोग सोचते ही नहीं उस लाइन पे। तो उनको कई बार लगता है कि अच्छा इट्स ऑल अबाउट कलर एनालिसिस, तो मैं वही बोलता हूँ कि कलर एनालिसिस तो बहुत छोटा सा हिस्सा है इस चीज का, यू नो देयर इज सो मच मोर, बट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए।
1: जी जी, जो युवाओं को पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, तो एज एन इमेज कंसल्टेंट आप अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को क्या कहेंगे?
0: वेल आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड जब भी यूथ का बात किया जाता है, बिकॉज आई थिंक दे आर द फ्यूचर फॉर आर स्टेट। यहाँ अभी मुझे यहाँ पे 5 साल हो गया है वैसे ईटानगर में, एंड अगर मुझे बोलना हो कि बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज वेरी फैशन फॉरवर्ड, जो हमारा यहाँ का यूथ है दे आर ऑलरेडी वेरी गुड इन फैशन अगर आप देखोगे। बट लाइक आई सेड कि फैशन इज नॉट इमेज, दे आर टू डिस्टिंक्ट थिंग। क्योंकि आप फैशन पिक कर रहे हो मूवीज से, आप फैशन पिक कर रहे हो बॉलीवुड से, आप फैशन पिक कर रहे हो कोरियन फिल्म इंडस्ट्री से, दैट इज फैशन, दैट इज डिफरेंट। वंस यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इमेज, आप उसको अपने जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हो टू क्राफ्ट द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, टू क्राफ्ट द काइंड ऑफ इम्प्रेशन यू वांट टू मेक इन द सोसाइटी। को अगर इन्हीं यूथ में से कल को कोई जाके अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनेगा, कल को कोई जाके अरुणाचल प्रदेश में आईएएस ऑफिसर बनेगा, डीसी बनेगा, सीईओ बनेगा, लॉट ऑफ अदर फील्ड, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बट इमेजिन इफ यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड सॉफ्ट स्किल्स आप में है, आपको इमेज का ज्ञान है, तो जस्ट एज अ पर्सन एज अ पर्सनैलिटी you will be so well groomed personality कि आपका impact ही कुछ और ही होगा। And when ये पूरा population ऐसे हो जाता है, then as a state we become much more capable and much more stronger।
1: तो अंत में आप हमारे सुनने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे कि उनका confidence और personality दोनों ही बेहतर बने?
0: वेल सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए एंड अपने आप पे काम कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप फिर चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, यू कैन ऑलवेज बिकम बेटर। एजुकेशन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज एंड आपका यूनिवर्सिटीज में खत्म नहीं हो जाता। एजुकेशन इज लाइफ टाइम, लर्निंग इज लाइफ टाइम। मेक इमेज, मेक सॉफ्ट स्किल पार्ट ऑफ दैट लर्निंग। जैसे मैंने कहा है कि इमेज एंड सॉफ्ट स्किल कैन कम सो हैंडी।

0: कैन बी सो यूजफुल. अगर आप उसके बारे में जानोगे, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे, आपको भी अंदाजा हो जाएगा. एंड यूज दैट टू ग्रो एंड बिकम बेटर, अचीव सक्सेस इन लाइफ.
1: जी, तो चिसांग जी, आप हमारे स्टूडियो आए और पर्टिकुलरली इमेज मैनेजमेंट के बारे में इतनी सारी जानकारी दी. इसके साथ ही साथ आपने कलर एनालिसिस हुआ या कलर साइकोलॉजी हुआ, और पर्टिकुलरली आपने ये भी कहा कि आज के दिन में हर किसी को सॉफ्ट स्किल सीखना जरूरी है, और पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स बीन ग्रेट प्लेजर.
1: याद रखिए, कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं मिलता, इसे हर दिन प्रैक्टिस करके निखारा जा सकता है. इसी पॉजिटिव थॉट के साथ कार्यक्रम से लेता हूं विदा. नमस्कार.
2: तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नरास. और दोस्तों, चलिए अब शुरू होगा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया. उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए. प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं उनका संबोधन.
4: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं. 2.5 लाख. साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है. यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा. आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी. और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं. जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था. लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए.
3: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे. इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है. रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया. पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है. दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है. शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है. बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है. हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है.

0: आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargaon and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid. Addressing the huge gathering, the Prime Minister highlighted the rapid transformation of India's transport and logistics sector, calling the completion of over 2,800 kilometers of dedicated freight corridors a historic achievement for 21st century India and a testament to the nation's changing work culture. We now go over live to the Prime Minister's address.
2: And with this bhav ke saath hi, maine Lal Kile se bhi Yuva Shakti ke liye do badi ghoshnaen ki hai. पहली घोषणा देश की पारंपरिक जरूरत से जुड़ी है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहां लाखों नौजवान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर साल हमारे मिडिल क्लास परिवारों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन बच्चों की कोचिंग पर खर्च हो जाता है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मिडिल क्लास के इससे बच्चे की परिवारों के पैसों की बचत हो और इसलिए अब सरकार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
1: Later in the evening, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai in Maharashtra this evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual FinTech conferences, is Potential to Impact Agentic AI Tokenization Quantum Trusted Connected Global Systems for Inclusive Finance. The GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today revisited the All India Institute of Medical Sciences, Delhi, to meet individuals injured in the Satyaniketan building collapse incident. Talking to media, the Chief Minister said the Delhi government will provide financial aid to the families of the affected students and labourers. Ms. Gupta said 7 people have died in the incident, while 12 victims were brought to the hospital for treatment. The Bombay High Court today refused to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in a 2019 defamation case over his remarks against Prime Minister Narendra Modi. A single bench of Justice N.R. Borkar dismissed Gandhi's petition challenging a magistrate court order that initiated proceedings against him. The Delhi High Court today refused to grant an urgent hearing on a PIL seeking hostel facilities in all colleges under Delhi University. The court asked whether such a direction could be issued in

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू रेट्रो की यादें, यानी हिंदी क्लासिक म्यूजिक, योर अल्टीमेट टाइम मशीन ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। दोस्तों आज का सफर है 60s से 80s के उस गोल्डन एरा के नाम, जहां हर गाना सिर्फ एक मेलोडी नहीं, एक इमोशन हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, देर न करते हुए कॉफी का कप उठाइए, वॉल्यूम को कीजिए फुल, क्योंकि अगले कुछ पलों तक हम और आप मिलकर खोलने वाले हैं यादों का वही पुराना खूबसूरत पिटारा। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि म्यूजिक वही है, बस एहसास और भी ज्यादा गहरा होने वाला है।

हाँ जी दोस्तों, आइए सुनते हैं पहला गीत तू इस तरह से, फ्रॉम द फिल्म आप तो ऐसे ना थे, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। लीजिए दोस्तों पैसे ये बेहतरीन गाना आप सबके लिए, ओनली ऑन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: चलो दोस्तों आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे हमारे इस संगीत में सफर पे, और तब तक के लिए सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: ओल्ड निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
2: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
3: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
1: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
4: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
4: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जाँच कराए, भेदभाव मिटाए।
4: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नरास, और आप सुन रहे हैं और बने हुए हैं हमारे साथ अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से हमारा ये संगीत में सफर हिंदी क्लासिक म्यूजिक। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है तेरा साथ है तो ओनली

हाँ जी श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। लेकिन अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब हम सुनाएंगे आपको कुछ हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। आइए लीजिए मजा, बताते हैं फर्स्ट गाना।

0: Gujarat. Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. Bombay High Court refuses to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in 2019 defamation case over his remarks against Prime Minister Narendra Modi. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
2: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
2: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी

0: आएंगे जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का सातवां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर एट एआईआर न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
3: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशे

0: नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
1: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद ने विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया।

प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

What's up guys, you are tuning to 90s ka fever. जी हाँ दोस्तों, hits of 90s. मैं हूँ आपका दोस्त आज ननास और आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात. दोस्तों, याद है वो दिन जब वॉकमैन पर टेप रिवाइंड करना पड़ता था और कैसेट्स के रिमोट फंसने पर दिल टूट जाता था. बस दोस्तों, उसी मैजिक को जिंदा रखने के लिए आज लाइनअप में है कुमार सानू की रोमांटिक वादियां और उदित नारायण के वो सुपरहिट ट्रैक्स जो हर 90s के बच्चों के दिल के करीब है. तो अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, विंडोज को करो डाउन और सुनते रहो अरुण FM 103.1 MHz. और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गीत, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, फ्रॉम द फिल्म राजा हिंदुस्तानी, जिसे गाया है उदित नारायण ने.

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

श्रोता दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90 आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब इसके बाद अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, उसके तुरंत बाद मिसमी कमान श्रोताओं का समाचार और उसके तुरंत बाद ताई कामती श्रोताओं का समाचार। लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे गर्मा गर्म शो के साथ जिसे कहते हैं बॉलीवुड अपडेट्स। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज जहां होती है दिल से दिल की बात।

तो जावरा दायु ग्लोंगी ने वन तंसाय ज्ञान चिके किन कमान तंसाय तो ले का किन कमान लाई कुंग सोंग भाई मन हरंगरा बजी के सम्रा फ्रूट ना ये कसित कला बचने कसित कमान जिने अंगो सन पासन

0: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे ताईकांती श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगा।
1: जोम नंग अखिंग नाम नली न स्टूडियो में चिकन मावा फापोई न चाहंग मने खामते खामती हाउ दिखाई मैं सुधियो हो।
2: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
2: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
2: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, चाय का कप हो या कॉफी का मग, जो पास है उसे पास ही रखो, बिकॉज यू आर ट्यून इन टू बॉलीवुड अपडेट्स विद योर फेवरेट होस्ट आरजे ननास एंड योर फेवरेट स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, इस सेगमेंट में हम आपको सुनाते हैं बॉलीवुड की दुनिया की कुछ ताजा तरीन और मसालेदार खबरें। तो अगर आपको जानना है तो बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

दोस्तों सुनिए, दोस्तों सितंबर का महीना चल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर गर्मी पूरी तरह से हाई है। सबसे पहले बात करते हैं उसकी, जिसका क्रेज पिछले हफ्ते से थिएटर्स की जान बना हुआ है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिर्जापुर द मूवी की। कालीन भैया गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी का वो खौफनाक 2018 वाला रॉ फ्लेवर अब बड़े पर्दे पर आ चुका है। और मान लीजिए ओपनिंग वीकेंड पर ही इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए रिकॉर्ड्स तोड़ नंबर क्रॉस कर लिए हैं। फैंस का रिस्पॉन्स देखकर लगता है कि स्ट्रीमिंग से बिग स्क्रीन तक का ये सफर बिल्कुल ब्लॉकबस्टर बन चुका है।

लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। इस हफ्ते और अगले के वीक्स में भी थिएटर्स का माहौल गर्म होने वाला है। सबसे बड़ा बज है अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आइकॉनिक जोड़ी की 11 सितंबर को आ रही फिल्म हैवान पर। डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ ये डायनामिक डुओ एकदम नए सस्पेंस थ्रिलर एंड एक्शन अवतार में लौट रहे हैं, जहां अक्षय कुमार एकदम डेंजरस एंटागोनिस्ट के रूप में नजर आने वाले हैं। और अब बात अगर टैलेंट और इंटेंस थ्रिल की हो तो दोस्तों 18 सितंबर को आ रही है मेघना गुलजार की दायरा, जिसमें पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन। रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड ये क्राइम थ्रिलर अभी से ही क्रिटिक्स की हिट लिस्ट में टॉप पर है। साथ ही फन और कॉमेडी के लिए कुणाल केमू की डायरेक्शन में बनी वाइब भी उसी दिन को बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रही है, जिसमें प्रीति जिंटा भी एक इम्पोर्टेंट रोल में है। तो दोस्तों टिकट विंडो पर लाइन लंबी है, जल्द से जल्द बुक कर लो और मजा उठाओ इन सब आने वाली मूवीज का। तो अब हम इस कार्यक्रम में जैसा कि आखिर में सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन गाना, आज भी हम आपके लिए ले आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द फिल्म मैं किलारी तू अनारी, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे वांछू श्रोताओं का समाचार, फिर हम मिलेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननास।

सुनो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब इसके बाद आप सुनेंगे ईद उन्नीस में श्रोताओं का समाचार, लेकिन अब फिर मिलेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

0: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं जब प्रस्तुत है इदुमिशी में श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर सेला पुची हेयू आंडोलिनी एतानी इदुमिशी आहोला के जी दरगालंबो बन अखगा माने आतिका चीन जो आमदो ने इदिया वो आचु एलेगादा ने कांग्रेस एम एल ए कुमार वाय में ओना अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली मा चे आनी निगे बने स्पेशल सेशन जी पगाम बा माने लगामा अरुणाचल प्रदेश होम मिनिस्टर ममा नातुंग में लादगा ने रजिस्टर एला एदो ने एलागु मी काजिया ऑर्गेनाइजेशन में बु बन अखावे कानून आचुमा खागुम दा लाइबादा आहोगा अली सुगाजी मी तावगा बने इनु एजाकाया आनी हो

0: HIV in be chipo asawe auda kaga
1: HIV hem be he HIV gila mingi chi iyu ga doga ga kandu ne ji toga ga HIV hem be gila injection tapo BGG tha doga ga mane HIV ki ali oda HIV hem be gila nani me a ga mane kha doga I
0: HIV in be he japa ji ge akon ga ge jepa hatu ga ge ai oda ne arondo me thoba mane HIV in be ki gumi
1: Aline HIV hembe gi jingaji tamako atusu arunda kaga hembe gi obojama asaga gi go abengo yabu ijiga atuchi toga hiwe HIV hembe yiji mi kaba asaga alaziji tamako agutene atusuji icha HIV hembe chipuma ichibu asawoda wogai buya hai National AIDS Helpline ji number kaga jiro kini uma call eji icha koba hai Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, Department of Health Services, Nahalagan Machime Lahega.
2: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे इदु मिस मिस श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात और अब आइए सुनते हैं कुछ हिंदी फिल्म के गाने

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। और दोस्तों गेड़ी की सुई पर हो चुके हैं ठीक 4:17 और यही पर वक्त हो चला है मेरी इस सेकेंड ट्रांसमिशन को रैप अप करने का। आपने इतना प्यारा, इतने प्यार से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहीं मत जाइए आप, क्योंकि अब स्टूडियो में माइक्रोफोन संभालने आ रही है आपकी और मेरी फेवरेट द वन एंड ओनली आरजे मंजू पामोन, जो आपके शाम के सफर को और भी ज्यादा मजेदार और म्यूजिकल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं यानी आपका दोस्त, आपका होस्ट मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आप सभी को बता दूं, आज की इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एते तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। तो अब मुझे यानी आपका दोस्त, आपका होस्ट आजय ननास को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। अभी आप सुन रहे थे तांगसा डायलेक्ट न्यूज। थैंक यू सो मच दाकमे नानास जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए, और उम्मीद करती हूं कि आपका ये शाम बहुत ही सुहाना बीते। दोस्तों, जिंदगी की आईना में आप तभी खूबसूरत दिखोगे जब आप उस आईने को देखकर मुस्कुराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अपने जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट जरूर रखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडियो के घड़ी के अनुसार। इस वक्त 4:29 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की तीसरी प्रसारण सभा। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। और जैसे कि मैंने बताया ही है आपको कि आज के इस सफर में मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। चलिए दोस्तों, मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Good evening, Itanagar.

हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। हमेशा की तरह दोस्तों, मजेदार गीतों के साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे आपके साथ। दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम बातें करेंगे इस बारे में कि हमें बार बार मैदे से बनी हुई चीजों को खाने से मना क्यों किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि अरे ये तो मैदे की बनी हुई चीज है, इसे नहीं खाना चाहिए। या फिर हम अपने बच्चों को भी मना करते हैं कि मैदे से बनी हुई चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। पर क्यों, कारण क्या है, क्यों है, क्यों कहा जाता है मैदा को अनहेल्दी, इसी बारे में हम बात करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, कोई मिल गया फिल्म से।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने आनंद लिया इस गीत का कोई मिल गया फिल्म से, और आज आप जान पाएंगे कि बार बार हमें मैदे से बनी हुई चीजें खाने को क्यों मना किया जाता है। मैदे से बनी चीजें कभी कभार स्वाद के लिए ठीक है, लेकिन रोज का भोजन वही बेहतर है जिसमें फाइबर, प्रोटीन और प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर हो भोजन अगर। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर हमारे स्नैक्स जो होता है, जैसे कि समोसा, कचौरी, पूरी, भटूरे, नूडल्स, पिज्जा, बिस्किट, केक और कई तरह के स्नैक्स ज्यादातर मैदे से ही बनते हैं। और मैं बता दूं आपको कि मैदा कोई जहर तो नहीं है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में अगर बार बार इसे आप खाते हैं तो ये आदत आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। पता है दोस्तों, गेहूं को प्रोसेस करके ही मैदा बनाया जाता है। गेहूं के आटे को प्रोसेस करके ही मैदा बनाया जाता है, जिसमें गेहूं की बाहरी परत और अंकुर का बड़ा हिस्सा हटा लिया जाता है। इसीलिए इसमें साबुत गेहूं के आटे की तुलना में फाइबर बहुत कम होता है। और आपको पता ही है फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, तो मैदे में फाइबर होता ही नहीं है। मैदे से बनी चीजों में फाइबर कम होने के कारण वे कई बार लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस नहीं कराती है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा खा लेते हैं और मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं। मैदा एक तरह से दोस्तों प्रोसेस्ड फूड ही है, और आपको पता है कि खाना जितना ज्यादा प्रोसेस्ड होता है वो उतना ही कम हेल्दी होता है। इससे बने पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादातर स्नैक्स में चीनी, नमक, गेहूं, नमक, घी, ये सब ज्यादा मिलाया जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। खासतौर पर अगर इसमें चीनी भी मिलाया जाता है, यानी कि किसी भी तरह का स्नैक्स जो मैदे से बना हो, जिसमें चीनी हो, घी हो, ये सभी मिले होते हैं, तो डायबिटीज वाले लोगों को तो ये खाना ही नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और फिर दोस्तों, मैदे में फाइबर कम होने के कारण अगर आप मैदे अपने आहार में लेते हैं, मैदे से बनी हुई चीज और साथ में फल, सब्जी, दाल या साबुत अनाज भी कम खाते हैं, तो इससे आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, कब्ज की समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये समझना जरूरी है कि केवल मैदा ही हर चीज का हर समस्या का कारण नहीं होता।

0: समोसा पूरी पेस्ट्री केक या बिस्किट जैसी चीजों में मैदा तो होता ही है दोस्तों, लेकिन मैदे के साथ तेल घी चीनी और नमक भी अधिक मात्रा में मिलाया जाता है और इन्हें बार बार खाने से कुल कैलोरी और पोषक तत्वों का संतुलन हमेशा बिगड़ ही जाता है। दोस्तों ये बात नहीं है कि मैदा सही नहीं है, आप कभी कभार स्वाद के लिए मैदा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार मैदे से बने हुए स्नैक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता। इसके बजाय आप गेहूं के आटे के बने हुए स्नैक्स या फिर बाजरा, रागी, ज्वार, ओट्स, दाल, फल, सब्जियां जैसी अधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होता है। बहुत ज्यादा बोल गई हूँ है ना दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैदे से बनी हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं अगले गीत का।
1: निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

दोस्तों सावर या फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नोक्टे डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजरिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ की विकास परियोजना का शुभारंभ किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 8वें कार्यकाल के 7वें विशेष सत्र के पहले दिन 3 अहम विधायी उपाय पारित किए गए। श्रीलंका के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलती है।

रक्षा परिषद ने 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई विकास परियोजना का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 अहम हिस्सों को देश को समर्पित किया, जिससे फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का काम पूरा हो गया और यह चालू हो गया। पीएम मोदी ने न्यू सानंद, न्यू मगरपुरा, न्यू अमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने टंडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन सेवा भी शुरू की, जिससे अलीराजपुर के दूर दराज आदिवासी इलाके नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ गए। भारी भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है और अब अपनी खुद की एडवांस ट्रेन और मेट्रो कोच बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने 2,800 किलोमीटर से ज्यादा लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम को पूरा होने को 21वीं सदी के भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश की बदलती कार्य संस्कृति का भी सबूत बताया। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली सालाना फिनटेक सम्मेलनों में से एक है। 4 दिन तक चलने वाला यह फेस्ट 11 सितंबर को खत्म होगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज मुंबई में शुरू हो रहा है। 2020 से GFF एक इंटरनेशनल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, जो पॉलिसी बनाने वाले रेगुलेटर, सेंट्रल बैंकों, फाइनेंशियल संस्थानों, फिनटेक कंपनियों, टेक्नोलॉजी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और दूसरे ग्लोबल स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाता है, ताकि वे फाइनेंस के भविष्य को आकार देने पर चर्चा कर सके। GFF 2026 की थीम है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एजेंटिक AI। क्वांटम समावेशी फाइनेंस के लिए भरोसेमंद कनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम, इस साल चर्चा इस बात पर केंद्रित होगी कि कैसे एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और दूसरी अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी दुनिया भर के नागरिकों, कंपनियों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए भरोसेमंद, समावेशी और मापने योग्य नतीजे दे सकते हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के 8वें विधानसभा का विशेष 7वां सत्र आयोजित किया गया। सत्र की शुरुआत करते हुए पूर्व विधायक कालिंग तगू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तालोंग तगू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद शून्यकाल चलाया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में आज MSME फेलिसिटेशन स्टेबलिटमेंट एंड ऑपरेशन बिल 2026 द अरुणाचल प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2026 द अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2026 सर्वसम्मति से पारित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के 8वें विधानसभा के विशेष 7वें सत्र के तहत कल भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण सदन को संबोधित करेंगे। सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में ITI क्लस्टर के लिए कुल 435 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपए से ज्यादा और तेलंगाना के लिए 254 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान शामिल है। इसे प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI की 5वीं नेशनल

0: कमेटी की बैठक की में मंजूरी दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा की मांग करने वाली एक पीआईएल पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि क्या अंतरिम तौर पर ऐसा कोई निर्देश दिया जा सकता है कि, और कहा कि याचिका को कल ऑटोलिस्टिक के लिए दायर किया जाना चाहिए। यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद दायर की गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अंतरिम चरण में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे इस मुद्दे पर कल ही एक और पीआईएल पर सुनवाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज मशहूर गायक और असम विधानसभा के पूर्व सदस्य भारत रत्न डॉ. भूपेन हाजोरिका को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉ. हाजोरिका की आवाज ने असम की आत्मा और पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अपने दिल को छू लेने वाले संगीत और दमदार शब्दों के जरिए डॉ. हाजोरिका ने असम, पूर्वोत्तर और व्यापक मानवीय अनुभव की भावना को बेखूबी से पेश किया। बीजेपी ने आपकी पंजाब सरकार पर राज्य में ड्रग्स की समस्या को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की देखरेख में ड्रग्स का नेटवर्क फल फूल रहा है, फिर भी इसे और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ये दिन हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व की याद दिलाई जा सके। इस साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है लोगों, धरती और समृद्धि के लिए साक्षरता। 1966 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 14वें सत्र के दौरान घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रगति की समीक्षा करने, लगातार बनी हुई और नई चुनौतियों के बारे में समक्ष गहरी करने और तेजी से बदलती दुनिया में भविष्य के साक्षरता एजेंडे को आकार देने का मौका देता है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया। IMD ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गंगा और के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुंडिचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्व भारत के बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की उम्मीद है। आज अहमदाबाद में 2026 वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज के तीसरे चरण में भारत ने तीरंदाजी में 2 गोल्ड मेडल जीते। हरविंदर सिंह और विजय सूरी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स फाइनल्स में और 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज का खिताब जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Prem Sharma. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. PM Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura and New Umbergaon and New JNPT, along with the new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Adirajpur to the national rail grid. Addressing the huge gathering, the Prime Minister emphasized that India has emerged

0: एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन हब कम फार्मर्स हॉस्टल पर फार्मर्स पिगमो ते रंग वन स्टॉप फैसिलिटी रंग इमो का जोंगा मा आखा होने की नाले एयरपोर्ट को मत्स्य ई वाहिनी व्हीकल गाड़ी ले ई रिक्शा पर मिन फ्लैग ऑफ फोन को बाजा अरे को खरी को खांडू मा एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025-35 हॉर्टिकल्चर पॉलिसी 2025-35 ले एपीकल्चर ले हनी पॉलिसी 2025-35 हेमिन लोसी को बाजा अरे को अरुणाचल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ले हनी न्याटी होन गन अजा मो पोटेंशियल टोंग ही जोंगा ममिन चोठो को बाजा डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेस नाबम गुंटे मा मजा होम मिनिस्टर मामा नातुम डमनांग चोमिन बाजा अरे गांव इन थोमिन टाको फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेस डिपार्टमेंट पर अपलिफ्ट हुआ ले रोंग से रंग थोमिन लगवा जाओ अरे को वनिसेप लेजिस्लेटिव असेंबली है वनिंग एक स्पेशल सेशन को लोकसभा में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेस अमेंडमेंट बिल 2026 से नमिन थोमिन वाजा गांव में जो चुजे टुकेगा टेनिस नंग इंडिया टी करण सिंह मा बाली इंडोनेशिया नंग आईटीएफ मेंस वर्ल्ड टूर M15 मेंस सिंगल टाइटल पर जीन वाजा अरे गौरे पा करण कैरियर वन बली टाइटल ले 2026 सीजन को वन रमजा मा चोटो कोएगा अरे को वन बली नंबर हरियाणा कर्नल व इंडिया टे पमा वन बंगा नंबर को वा न्यूजीलैंड टे आइसक बेक्रॉफ्ट पा 7576 मा जीन वाजा मा जो चोटो कोएगा Minister of Education P.D. Sona, Rajiv Gandhi University Research Scholars Forum RGU RSFA Khabang Foundation Rambo Kam Scholars Meet Ko Kat Vajau. Adiga Sona Ma Social Media Post Ne Ma RGU RSFA Na Congratulate Huan Nam Ko Research Scholars Young Academics Le. University Community He Dam Nam Nin Chi Lamin Rang Asan Mung Ho Ma Jo Vajau Nga Ma Jo Tho Ko Vajau. अधिक मिनिस्टर को मार रिसर्च स्कॉलर से नंग स्टेट ही इंटेलेक्चुअल चैंपर रिप्रेजेंट हुए नामिन चोटो को बाजा अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स APSCPCR हिमा चाइल्ड ट्रैफिकिंग ला एक्सपोर्टेशन व रूक रंबानी मता रेस्क्यू हो दाजिन को नमसा पुलिस से सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नमसा डिस्ट्रिक्ट खन को खरोक एक्शन कप्थाले चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC नमसा हे नंग न्यारंग रो बाजा अरे को APSCPCR चेयरपर्सन रतन नान्यामा SP नमसाई डिस्ट्रिक्ट संगे चिनले ले CWC चेयरपर्सन सिटी सिंह कैनी डमनंग अति डेडे जापमिन वाजा अरे को कमीशन है मा को खो बच्चो डी का सुई मोटो कोग्निजेंस पर कब वाले मता ही स्टेट वा हान हान थे वा रेस्क्यू होन वाले मता फोंग कोते हे लूट हक वाजा नामा चोटो को वाजा अधिक कमीशन है SP नमसाई व एक्शन टेकन रिपोर्ट पर था ले CWC नमसाई व स्टेटस रिपोर्ट पर मिन था वाजा ना मजा चोटो कोएगा तो जाना मुक्त देखो बढ़ता को जो लाथुन मुक्त था माचो
1: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है
2: HIV संक्रमित खून असुरक्षित यौन संबंध संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है
1: लेकिन याद रखें साथ बैठने हाथ मिलाने गले लगाने साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता
2: HIV की जांच कराएं समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है
1: HIV से डरे नहीं जानकारी बढ़ाए जाँच कराए भेदभाव मिटाए
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी

0: तो दोस्तों, नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब समय है थोड़ा ठहरने का, सुकून के कुछ पल बिताने का और संगीत के साथ अपने इस शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने का। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।
1: निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट

आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: ये देख कैसे
3: हैप्पी बर्थडे भाई
2: देखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है
6: आई नो बा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
4: आई नो ना
6: आरबीआई कहता है
7: करो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

बता दूं आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को सनम तेरी कसम फिल्म से नीति मोहन की आवाज में।

दोस्तों, क्योंकि फिल्म के इसी गीत के साथ ही बता दूं आपको कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मनोरंजन का सिलसिला रुकेगा नहीं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए आनंद लेते हैं इस बार कार्यक्रम शाम की महफिल का।

मेरे प्यारे दोस्तों, आपके शाम को, इस खूबसूरत से शाम को सजाने संवारने के लिए लेकर आए हैं हम कार्यक्रम शाम की महफिल। और अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का, मींस कुछ देर पहले आपने आनंद लिया दे दे प्यार दे फिल्म के गीत का। और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को स्टेबिन बेन और जसलीन रॉयल की आवाज में, इस गीत को साहिबा से।

0: निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
1: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
0: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: चाय की चुस्की हो या अपनों का साथ, हमारी आवाज रहेगी हमेशा आपके साथ। शाम ढलेगी, संगीत बजेगा और आपका रेडियो सफर यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों, हाजिर हो गई हूं आपके लिए कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का।

दोस्तों, शाम का अपना ही एक अलग ही जादू होता है और जब इसी शाम में अपने मन पसंदीदा गीतों को सुनने मिल जाए और इस शाम में ये गीत घुल जाए तो हर पल जैसे एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में और पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए कुमार शानू की आवाज में नाराज फिल्म से।

0: इंडोनेशियन यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने ही तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

श्रोता इम्तिहान फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आदि डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं।

0: भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

स्वागत करती हूँ श्रोता आप सभी का आदि दैनिक न्यूज के बाद एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए मनोरंजन के इस सिलसिले को आगे लिए चलते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का।

स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप सभी लोलो के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 जून 1974 को जन्मी करिश्मा कपूर के बारे में आज हम बात करेंगे। करिश्मा कपूर जी हाँ दोस्तों, उस कपूर खानदान से हैं जिसे हिंदी फिल्मों का प्रथम परिवार कहा जाता है। कपूर खानदान की महिलाएं फिल्मों में अभिनय नहीं करती हैं, ऐसा था पहले। शशि कपूर की बेटी संजना कपूर ने इस परंपरा को तोड़ा जरूर, लेकिन उन्हें फिल्मों में सफलता नहीं मिली। तो कहा जाता है कि सही मायनों में करिश्मा कपूर इस कपूर की पहली सफल महिला कलाकार है। करिश्मा का दोस्तों निकनेम लोलो है, आप सभी जानते हैं। वैसे करिश्मा को बॉबी देओल के साथ लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन बॉबी की फिल्म शुरू होने में वक्त था, इसीलिए करिश्मा कपूर ने इंतजार करना ठीक नहीं समझा और प्रेम कैदी 1991 से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। करिश्मा ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली तो उन्हें लुक को लेकर यानी कि उनके लुक को लेकर काफी मजाक भी बनाया गया, लेकिन किसी ने दोस्तों कोई उन्हें लेडी रणधीर कपूर कहा करते थे तो कुछ ने कहा कि वो लड़के जैसे दिखती हैं। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी करिश्मा को साइन करने के लिए निर्माताओं में होड़ मची रहती थी और इसके पीछे उनका कपूर खानदान से होना था। और फिर दोस्तों प्रेम कैदी एक सफल फिल्म रही और 1992 में करिश्मा की छह फिल्में रिलीज हुई और उन्हीं में से एक है फिल्म जिगर। जी हाँ, 23 अक्टूबर 1992 को ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म में करिश्मा कपूर ने सुमन की भूमिका निभाई। सुमन अजय देवगन द्वारा निभाए गए राज यानी कि राज वर्मा के किरदार से प्रेम करती है और फिल्म की कहानी में उनका रिश्ता भावनात्मक आधार प्रदान करता है, जबकि राजू की जिंदगी संघर्ष और बदले की भावना के कारण एक अलग दिशा में चली जाती है। दोस्तों इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया और ये फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर रही। तो आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और इसी फिल्म यानी कि जिगर फिल्म के इस गीत का आनंद लेते हैं।

तो दोस्तों, आपने आनंद लिया इस गीत का जिगर फिल्म से। 90 के दशक में फिल्मों का स्तर बहुत दोस्तों लिमिटेड हुआ करता था। हीरोइनों के लिए कुछ करने को नहीं रहता था, लिहाजा करिश्मा ने जो फिल्में करिश्मा को जो भी फिल्में मिली वो उन्होंने साइन कर लिए। बावजूद इसके दोस्तों, अगर करिश्मा कपूर की हिट फिल्मों के बारे में बात करें तो राजा हिंदुस्तानी करिश्मा के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। पहले यह फिल्म ऐश्वर्या राय करने वाली थी, लेकिन बाद में करिश्मा उनकी जगह आ गई। करिश्मा कपूर को डेविड धवन अपने लिए बहुत ही लकी यानी कि भाग्यशाली मानते हैं। डेविड के साथ करिश्मा ने राजा बाबू, अंदाज, कुली नंबर वन, जुड़वा हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई जैसे कई फिल्में की, और ये सभी फिल्में यानी कि मैक्सिमम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दोस्तों, करिश्मा कपूर, जुबैदा, राजा हिंदुस्तानी दिल तो पागल है, फिजा जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय दिखाया और उन्होंने साबित किया कि वो एक उम्दा कलाकार है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं दिल तो पागल है फिल्म के इस गीत का।

न्यूशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर। और इस दौरान आज हम बातें कर रहे हैं आप सभी की चहेती लोलो के बारे में, जी हाँ, करिश्मा कपूर के बारे में। दोस्तों, जुबैदा, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, फिजा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर साबित कर दिया कि वो एक उम्दा कलाकार हैं। दिल तो पागल है में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े कलाकारों की तुलना में छोटा रोल होने के बावजूद करिश्मा ने बेहतरीन अभिनय किया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। करिश्मा कपूर को राजा हिंदुस्तानी और फिजा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दिल तो पागल है के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड और फिर जुबैदा के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड का अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं जुबैदा फिल्म के ही इस गीत का।

दोस्तों जुबेदा फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: assembly ga lekukande nan special session ka baham bag takolo fire emergency service amendment bill 2026 ham lalek tak lek lochin agom aham jami sitapuk na ham la men patato morgase alho rajiv gandhi university law first foundation de kam scholars meet of rajiv gandhi university research scholars forum menam kaba lo arunachal pradesh state ke education minister darman pd shona ye dopa dakpa ming pukna khal men pa do ok rajiv gandhi university research scholars forum ga alberi ga pa ga kuna lo alba hil kale ke dukna khamna jabta jagam agom kham narma Shona ye social media la javlik Greek la research scholars good ne la Nigeria pa alba pur kun good ne ok university ga ni good ne agam aham alba japa pa mo Greek la yog yog nam pa nam ham chema pa ma kunam lega ba alba met me ngam shid kun ham na minister ye japta pu kuda ba ham to ok Arunachal Pradesh state lok chenam pa nam ham alba chenen palen mo do ko ba research scholarship gursi riga pag gag tukuna maham na minister japta pukuna maham to kasrunga nisipu ye hebo
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है
2: एचआईवी संक्रमित खून असुरक्षित यौन संबंध संक्रमित सुई सिरिंज और मां से बच्चे तक फैल सकता है
1: लेकिन याद रखें साथ बैठने हाथ मिलाने गले लगाने साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता
2: एचआईवी की जांच कराएं समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है
1: एचआईवी से डरे नहीं जानकारी बढ़ाए जांच कराए भेदभाव मिटाए
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी
3: निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद स्वागत है श्रोता आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में आई श्रोता इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों की ओर
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में स्वागत करते हुए फटाफट चलिए आपको बता देते हैं पहला गीत हमने लिया है रंग दे बसंती फिल्म से

0: निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता, फिदा फिल्म के गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए और बता दो आपको कि आपसे बस कुछ ही पलों में आप आनंद ले पाएंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
2: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत आपका धन्यवाद
1: जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है सर।
1: क्या बात है, क्या बात है, दोस्ती पर बहुत ही जबरदस्त शायरी
2: सर। आपसे दोस्ती ऐसी है हमारी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और इस दोस्ताना को हमेशा बनाए रखें।
2: जी बिल्कुल
1: जी
2: सर।
1: हाँ जी, तो परिचय हो जाए।
2: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से आपका मित्र दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ सर।
1: जी दिलीप जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
2: धन्यवाद
1: बहुत
2: सर।
1: जी बहुत ही बढ़िया शुरुआत की आपने, और सुनाइए कैसे हो आप?
2: मैं तो अच्छा हूँ, आज आपसे बात करके और भी अच्छा हो गया सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बेहतरीन माहौल में कौन सा गाना हम आपको सुनाएं?
2: सर जन्माष्टमी का पर्व तो अभी चला गया है
1: जी,
2: तो उसी का ही एक मुझे गाना याद आ रहा है।
1: अच्छा जी,
2: छोटी बहू फिल्म का है। तेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको पाला एक ने जन्म दिया। तेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया।
1: जी जरूर सुनाएंगे, बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है
2: जी सर।
1: जी
2: और ये गाना मेरे तीन दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा सर।
1: जी जरूर।
2: सबसे पहले तो आप हैं,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: और सेकंड नंबर पर हमारा हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप है, उसके सभी लिस्टनर सभी लाइन में कतार लगा के खड़े हैं।
1: ओके
2: तो हम भी अभी एंट्री बजा दें अपनी।
1: अच्छा जी।
2: और तीसरे मेरे वो साथी गण जो इस समय भी ईटानगर को सुन रहे हैं।
1: ओके जी।
2: ये तीनों मेरे दोस्त दिल के बहुत करीब रहते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी अपना दोस्त बनाने के लिए। और दिलीप जी, कैसा मनाया आपने जन्माष्टमी?
2: सर अच्छा ही मनता है हमारे उदयपुर शहर में तो। जगदीश मंदिर पर मटकी फोड़ का प्रोग्राम प्रतिवर्ष ही होता है।
1: अच्छा जी।
2: हजारों की तादाद में श्रद्धालु गण होते हैं।
1: देश विदेश से आते होंगे
2: जी। इसका लाइव टेलीकास्ट हमारे टेलीविजन पर आता है, उसी को देख के आनंद लेते हैं।
1: अच्छा क्या बात है जी जी।
2: और दो तीन दिन तक लगातार आता है वो भी प्रसारण उसका।
1: जी
2: तो उसी को देख के आनंद लेते हैं। बाकी यहाँ पास में ही हमारे स्थल मंदिर है।
1: अच्छा।
2: वहाँ जाके दर्शन वगैरह कर आते हैं श्रीनाथ जी भगवान जी के, वहाँ जाके वगैरह भी देख के आ जाते हैं सर।
1: अच्छा अच्छा, तो पता चलता है कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जन्माष्टमी अपने पूरे परिवार के साथ।
2: जी बिल्कुल सर।
1: जी जी जी। तो दिलीप जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर जी, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल।
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा से आपका नियमित श्रोता सर।
0: जी शिवा लोहट जी, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कैसे हैं सर आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: सर जी हम बहुत बढ़िया हैं और रिमझिम बारिश लगी हुई है और आपसे बातचीत का सिलसिला चल रहा है सर।
0: क्या बात है, बहुत ही सुहाने मौसम में आप और हमसे जुड़ रहे हैं, अच्छा लगा। जी जी जी, जी। और जन्माष्टमी
1: कैसे रहे फेस्टिवल आपके सर?
0: जी हमारे यहाँ पे मनाया जाता है।
1: जी
0: जी जी, जी हाँ, काफी लोग आते हैं और मंदिर में जाके दर्शन करते हैं।
1: जी सर जी। आप देखिए ना सर, आप ये हो गया, आप गणेश उत्सव आ जाएगा, फिर नवरात्रि आ जाएंगी, अभी फेस्टिवल ही फेस्टिवल है
0: जी, फेस्टिवल का सीजन आने वाला है।
1: जी सर।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो आज कहिए शिवा लोहट जी, कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: सर जी एक मूवी रहेगी मिस्टर बेचारा, उसमें एक कुमार तानु जी की आवाज में गाना है, कोई कोई आंखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र रहेंगे पूरन बरवनमा जी, शारदा प्रसाद जी, अविनाश जी, पुरुषोत्तम कुमार जी और अमल जी, विमल जी और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आपको डेडिकेट रहेगा सर ये गाना।
0: जी मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवा लोहट जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार.
0: नमस्कार. हेलो फरमाइश ईटानगर.
1: मैं दिनेश शर्मा कैसे.
0: दिनेश शर्मा कॉल करा करने बहुत बहुत धन्यवाद. कैन को आसे अपनी.
1: मो गाड़ भाल ना जो मुरोबी.
0: ओहो अरे की होल.
1: जो भी चलो
0: की बोरखोन की पार बिजी से निकल.
1: ऑल ऑफ बहुत इटा हुई चले.
0: अच्छा अच्छा अच्छा. ओ ठीक है ना. ओके ओके ओके. हाय हाय.
1: हाय भले आसे.
0: ओ मैं खूब भाल. अपनी खेल करबो. मेडिसिन दबाई सबाई लले जानो.
1: ड्रॉप खाइसे. हाय
0: ड्रॉप खाइसे न. ओके ओके.
1: लोक आला भाल पाइसे जे लोक.
0: अच्छा अच्छा ठीक ठीक है. भाल हो जाबो हनकाले. तो आज को की गाना हुनिबो अपनी.
1: आज मोहम्मद रफी गाना बजा लेबो.
0: मोहम्मद रफी
1: जी कोनटा बजा लेबो.
0: अच्छा मोहम्मद रफी ए जी कोन एटा गाना. ओके ओके ठीक है. हुनाइ दिम. आरो काक डेडिकेट करबो अपनी.
1: पनोडी दत्त মাধবী নাথ আইকন মুন্দা গীতান্ডিকা হৰদুৰা মন্টু বৰুৱা শিলপল দৌৰা কল্পনা দৌৰা ভতিজা আপোনাক সকলোকে অৱগতলৈ লগতে অসমবাসীকো.
0: অ'কে. আৰু দিনেশ শৰ্মা আপুনি ক'ত ক'ত কল কৰে হেল্ল' ফৰমাইজ কাৰণে.
1: নহয় মই চবতে ফোন কৰোঁ.
0: আচ্ছা আচ্ছা. কোনটো কোনটো
1: অল ইণ্ডিয়া. অল ইণ্ডিয়াত ফোন কৰোঁ.
0: অল ইণ্ডিয়াত ফোন কৰে আপুনি. ঠিক আছে দিনেশ দা কল কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ. আমি আপোনাৰ পছন্দিতা গানা শুনাই আছো.
1: ধন্যবাদ.

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाई
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर
1: जी, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव
0: जी। मनोज नामदेव जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद सर जी।
0: जी और सुनाइए, आप कैसे हो? आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, मैं तो बढ़िया हूँ। अब मौसम की बात है सर, तो आज तो मौसम लगभग खुला हुआ है।
0: अच्छा।
1: और बहुत दिन से लगातार बारिश होती जा रही थी, आज खुला है लेकिन सर।
0: अच्छा
1: बिल्कुल सर।
0: ओके, तो बढ़िया मौसम है आज।
1: हाँ सर,
0: ज्यादा धूप तो खिला नहीं?
1: नहीं सर।

0: धूप ही निकली है सर।
1: अच्छा, धूप ही खिला हुआ है। ओके
0: हाँ
1: ओके,
0: सर
1: तो बढ़िया मौसम में कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: जी, असर संवादो फिल्म का नाम रहेगा फूल और कांटे, और उसके सारे गीत बढ़िया है, कोई सी भी गीत सुनवा दो सर आप।
1: अच्छा, फूल और कांटे फिल्म का कोई सा भी गीत?
0: जी हाँ जी हाँ
1: जी हाँ, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो आपके
1: बहुत
0: लिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: भैया मंकी नामदेव जी हैं, माइक नामदेव जी हैं, राहुल नामदेव, शिवम नामदेव, दासी ममता समस्त नामदेव परिवार हैं, और हमारे भैया लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, और जितनी भी ईटानगर कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहे हैं सतपुली गाना डेट।
1: जी जरूर सुनाएंगे। और मनोज जी, कहिए कैसे मनाया आपने जन्माष्टमी?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मैं भूल ही गया, बिल्कुल सर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई है, और भगवान कृष्ण जी का जन्म था तो सभी दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम सेलिब्रेट किया सर।
1: अच्छा, जी, कौन सा मंदिर आपने दर्शन किया? मंदिर वो?
0: सर जी मेरे यहाँ भी कृष्ण भगवान का मंदिर है और
1: अच्छा,
0: छोटा सा मंदिर है, लेकिन मैं सोच रहा था वृंदावन जाने की, लेकिन सर बारिश के खातिर में नहीं जा पाया सर,
1: ओके ओके ओके, जी,
0: तो अपने गांव में ही जन्माष्टमी का वो पर्व मनाया सर।
1: अच्छा, दोस्तों और परिवार के साथ?
0: हाँ सर
1: जी। तो मनोज जी, सुनते हैं आपके पसंद के गाने।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो, मेरा से बात कर रहा हूँ। बात कर रही है। आप
0: जी नमस्कार सोतापा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कैसे हो?
0: जी मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया। फोन करते हो, मैं भी खुश हो गया।
0: जी ये हम भी बहुत ही खुश होते हैं जब आपका कॉल आता है। जी आपका वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो बहुत अच्छे है, बढ़िया है। अभी धूप उठा है।
0: धूप उठा है। ओके जी, तो इस बढ़िया मौसम में कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुना दीजिए तो कम दो दिन चार टेन से बोलो माया जी की जय जयकार।
0: जी जरूर सुनाएंगे इस गीत को। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: मैंने तो आपके लिए
0: जी धन्यवाद।
1: रमोदी चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, अविनाश तेली, लुकंदर वर्मा, श्रीकांत जोशी, अमर सिंह साहू, अनुपमा भट्टाचार्य, सपना चारिया, सिंधु दास,
0: जी इन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे।

0: करार,
1: थोड़ा थोड़ा
0: दे दे मेरे दिल को करार।
2: हेलो फरमाइश।
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: मैं कश्मीर सोनामर्ग से आपका नीमी श्रोता लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
2: जी लतीफ साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
3: बस बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे भी आजकल मौसम सुहाना रहता है।
2: अच्छा, जी जी जी।
3: हाँ जी,
2: कारोबार शुरू हो गया आपका टूरिज्म का?
3: हाँ, ये तो थोड़ा थोड़ा तो अभी टूरिस्ट आ गए यहाँ पे, उतना नहीं जितना तो पहले आते थे।
2: अच्छा,
3: हजारों में अभी तो कम आते हैं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा जी, धीरे धीरे आएंगे शायद जैसे जैसे ठंडी का मौसम आता जाएगा।
3: हाँ हाँ, लगभग तो नवंबर में तो आएगा पूरा टूरिस्ट यहाँ पे।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, कब से
3: हमारे सोनामर्ग में?
2: ओके, कब से बर्फबारी शुरू होती है लतीफ जी वहाँ पे?
3: यहाँ पे सर दिसंबर से।
2: अच्छा,
3: 15 दिसंबर या 20 दिसंबर से यहाँ बर्फबारी हो रही
2: है। अच्छा अच्छा, दिसंबर से बर्फबारी होती है
3: सर, ऊंची जगहों पे, पहाड़ जगहों पे।
2: अच्छा, पहाड़ी जगह। ओके, आपके सोनमर्ग में? सोनमर्ग में नहीं पड़ता बर्फ?
3: बर्फ तो पड़ता है, लगभग दूसरे साल तो बर्फ पड़ेगा।
2: अच्छा अच्छा,
3: 2 महीने तो बर्फ गिरता है, उतना नहीं।
2: अच्छा,
3: पहले गिरता 7 फुट 8 फुट।
2: अच्छा,
3: अब कम ही बर्फ आता है।
2: अच्छा अच्छा जी जी, मौसम के बदलाव के कारण ये सब परिवर्तन आ रहा है जी।
3: ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बर्फ कम
2: जी,
3: हुआ
2: जी जी जी जी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है। जी, तो आशा करते हैं कि इस बार भी बहुत सारा टूरिस्ट आपके वहाँ पे आए और आपका कारोबार अच्छा फले फूले।
3: हाँ हाँ सर, आजकल यहाँ जो सितंबर का ये महीना चलता है ना सर, ये तो फसल की कटाई चलती है यहाँ पे, धान और मक्की की फसल।
2: अच्छा अच्छा जी।
3: हाँ, और अखरोट है ना, वो भी खोड़ ये उतारते हैं।
2: हाँ जी, वहाँ के अखरोट हमारे यहाँ पे भी आते हैं जी, बहुत ही बढ़िया होता है। जी जी जी,
3: सही।
2: तो अच्छी जानकारी दी आपने लतीफ जी। कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप हम आपको सुनाए?
3: हमें आज गाना सुनना है शब्बीर कुमार की आवाज में, आपकी पसंद पे कोई भी।
2: अच्छा, शब्बीर कुमार की आवाज में कोई भी गाना?
3: हाँ जी, आपकी पसंद पे।
2: अच्छा अच्छा जी, मैं अपने पसंद का गीत आपको जरूर सुनाऊंगा और आशा करता हूँ कि आपको वो गाना जरूर पसंद आए।
3: कुछ साथी है हमारे साथ।
2: जी जी जी, हाँ जी, साथियों के नाम ले लीजिए।
3: रमेश प्रजापति, टेलर मास्टर, और भगवान सिंह परमा, लोपेंद्र वर्मा, और गजराज लोधी, और राकेश कुमार।
2: ओके, इन साथियों के साथ सुनना चाहते हैं आप शब्बीर कुमार का गाया गीत।
3: धन्यवाद
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: जी। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते।
1: छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर। ईटानगर
0: जी
1: आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ सर मैं।
0: जी सतीश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आपके कॉल आते हैं।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल सर जी। हर खुशी कभी दिल के करीब नहीं होती और रेडियो भी दिल से कभी दूर नहीं होती।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी इसी तरह से हमसे दोस्ताना बना रहे रखिए जी।
1: जी
0: और कहिए कैसे हो आप, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो बिल्कुल सर जी, अभी तो धूप खिली हुई है
0: हम्म।
1: और मैंने दिल से कॉल लगाने की आज कोशिश की थी कि मेरे को मेरा गैप है तो आज लगा के देखूं, लग जाए तो ठीक है और ना भी लगे तो भी ठीक है, मगर सर किस्मत जो होते हैं
0: जी
1: वो हमें तो सफलता की ओर चले जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपका कॉल लग गया, आपसे बात हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है
1: जी
0: जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे भी अच्छा लगा सर जी।
0: हम्म।
1: और आपकी जो आवाज, मीठी मीठी आवाज, बिल्कुल सर प्रसारण हो जाता है तो और भी अच्छा लगता
0: क्या
1: सर।
0: बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सतीश जी कहिए कैसे मनाया आपने जन्माष्टमी?
1: सर जी बहुत ही अच्छे मनाए सर जी, दोस्त लोग के साथ बढ़िया मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखे हैं सर जी हमने, और
0: अच्छा।
1: बढ़िया आग बांध करके सर जी मटकी फोड़े तो बहुत ही आनंद आता है, और जब हमारे दोस्त लोग इधर किधर बहक जाते हैं तो और भी आनंद आता है।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ, कहीं मंदिर में आपने मनाया या फिर अपने गली में, शहर में?
1: जी नहीं सर, हमारी गांव में गली मोहल्ले होते हैं तो उसमें
0: अच्छा
1: मनाते हैं सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी सभी परिवार के और दोस्तों के साथ।
1: जी जी बिल्कुल सर।
0: ओके ओके जी जी तो सतीश जी आज कहिए कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: आज मुझे सुनो दीजिए सर जी, फिल्मी का नाम है आंदोलन और गीत के बोल रहेंगे सर जी, कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे थे सर, गोविंदा की आवाज है सर।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे?
1: सर सबसे पहले तो आपको
0: धन्यवाद जी।
1: और हमारे सम्मानीय मित्र हैं सर जी, गौतम राय बोले जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं और लोकेंद्र वर्मा जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति, राजन गंगवार जी हैं, राजू यादव जी हैं, और सर सुनने वाले सभी को डेडिकेट रहेगा सर
0: सभी
1: जी।
0: को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो सतीश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी थैंक यू सर।
0: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपार, डिस्ट्रिक्ट एकाचार, असम से।
0: जी देवजीत दास, आपने बहुत दिनों के बाद कॉल किया।
1: मैं तो असम में व्यस्त हूँ, इसीलिए तो आज मैं काफी दिनों के बाद आज
0: अच्छा
1: बातचीत हुआ।
0: जी जी जी,
1: अच्छा लग रहा है मुझे।
0: जी मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद आपने हमें याद किया। और किस काम में बिजी थे देवजीत दास?
1: मैं तो अभी तो पेपर प्लेट होता ना, मशीन में काम करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी,
1: पेपर बनाती हूँ, काम ये सब होता है।
0: अच्छा,
1: चाय की काम जो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चाय का ग्लास जो होता है पेपर वाला था। ओके, और आज क्या छुट्टी? आज छुट्टी है।
1: आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आशिकी।
0: ओके,
1: और गाने का बोल है तू मेरी जिंदगी है,
0: तू मेरी जिंदगी है,
1: हर खुशी है, ये गाना भी।
0: ओके, हाँ जी जरूर सुनाएंगे।
1: और ये गाना भी गया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने।
0: जी जी हाँ जी।
1: और ये गाना कुछ मैं परिवार में डेडिकेट करूंगा।
0: हाँ जी जरूर।
1: पिताजी है जितेंद्र कुमार दास और माताजी शिल्पारानी दास, बड़े भैया जोजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी।
0: okay.
1: और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा।
0: हाँ,
1: पहले मेरा बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य, और है दीदी है छोटवा भट्टाचार्य जी, रामतो भाई, प्रेमजी दादा, बप्पन दादा, और है मेरा जौहर दादा, और बेंगलुरु से है मेरा दादा है मिशन चक्रवर्ती, और पश्चिम बंगाल से है मेरा दादा है गणेश दास।
0: अच्छा।
1: और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते हैं 750 के लिए गाना डेडिकेट करूंगा।
0: ओके, तो देवजीत दास कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आशिकी फिल्म का गाना सुना रहे हैं।
1: नमस्कार, आपके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नाना।

0: खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
1: जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
0: बात बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और आज ये उज्जैन महाकालेश्वर जी की नगरी है, यहाँ पर आज मतलब शाही सवारी निकाली जाएगी महाकाल जी की।
1: अच्छा जी।
0: जी सर जी, ये जैसे कि सावन महीना जब खत्म होता है ना, तो सावन महीने में 4 सवारी निकली थी उज्जैन भ्रमण पे महाकालेश्वर जी की। और ये सावन के बाद में जो भादव महीना आता है, उसमें 2 सवारी इसमें निकलती है। तो एक सवारी तो पहले सोमवार को निकल चुकी है।
1: अच्छा।
0: अब ये भादो महीने की लास्ट सवारी है, इसको शाही सवारी कहते हैं सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी
0: और सर शाही सवारी में मतलब पुलिस प्रशासन अपना मतलब जो बैंड रहता है पुलिस प्रशासन का, वो बैंड भी रहता है साथ में।
1: अच्छा जी।
0: घोड़ा पालकी और सभी मतलब सभी अपने गणवेश में रहते हैं। और बाबा महाकालेश्वर जी की जो सवारी निकलती है वो पूरे शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी। ये सवारी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है?
0: सर ये महाकालेश्वर मंदिर से चालू होगी, और महाकालेश्वर मंदिर से चालू होने के बाद में शिप्रा घाट पर जाएगी। शिप्रा घाट पर शाम के समय में संध्या आरती होगी।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद में मतलब जो उसके प्रमुख जो रूट बना हुआ है, उस रूट के माध्यम से सारे जो शहर में है वहाँ निकलती है।
1: अच्छा।
0: और रात को 10 बजे ये फिर रात को महाकाल प्रांगण मंदिर में वापस जाती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी।
0: और महाकाल राजा मतलब पालकी में सवार होकर सभी जो उज्जैन के नागरिक है, बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं, सभी को अपना दर्शन देते हैं। और महाकाल भगवान मतलब प्रजा का हाल चाल जानने के लिए उज्जैन शहर में भ्रमण के लिए निकलते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी।
0: तो और इसका सर महत्व बहुत है, और बहुत से तीर्थयात्री उज्जैन, करीब 10 लाख पब्लिक आने की संभावना है आज।
1: अच्छा क्या बात है। जी जी जी। और इस शाही सवारी में कोई भी भाग ले सकता है?
0: हाँ,
1: शुरू से अंत
0: सभी श्रद्धालु आते हैं, बाहर से सभी भाग ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और उज्जैन के जो प्रमुख बैंड रहते हैं, जो संगीत कलाकार लेते हैं, वो अपने कला का प्रदर्शन भी करते हैं उसके अंदर।
1: अच्छा।
0: और बैंड भी निकलता है साथ में।
1: ओके, गीत संगीत का कार्यक्रम भी होता है वहाँ पे?
0: जी सर जी।
1: अच्छा अच्छा ओके। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने लोकेंद्र जी। तो इस जानकारी के साथ साथ अब बताइए कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
0: गाना तो सर ये पुरानी फिल्म है, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें गाना है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, ऐसा गीत है सर।
1: जी जी जी जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
0: शारदा प्रसाद जी है, दिलीप पाहुजा जी है, नरेश प्रजापति जी है हमारे, और एक रमेश प्रजापति जी है हमारे। एक दुकान पर हमारे कस्टमर है मनोज आनंद जी है।
1: अच्छा।
0: और हमारे जो सैलून पर काम करने वाले हैं रवि सोलंकी, और हमारे धीरज भाई हैं, सभी बैठे हैं, ये भी प्रोग्राम सुनते हैं जब आपका प्रसारण होता है सर।
1: अच्छा क्या बात है। जी तो लोकेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

श्वेता, अभी आप आनंद ले रहे थे आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 MHz पर।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
0: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

मैं सुन रही हूँ। बोलो, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना।

श्रोता, आप आनंद ले रहे थे इस गीत का, बत्ती गुल मीटर चालो फिल्म से। और इसी गीत के साथ ही बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।

0: श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 MHz पर। जी हाँ श्रोता, अरुण एफएम जो आपके मनोरंजन का खास ख्याल रखती है, हमेशा एक से बढ़कर एक मजेदार गीतों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहती है। सिर्फ गीत ही नहीं, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से भी रूबरू कराती है आपको अरुण एफएम।
1: निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
2: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जाँच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ, 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना, पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और?
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़िया, जाओ भाई।
8: RBI कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

श्रुता, हाल ही में देखा गया है, आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास आई फ्लू काफी फैल रही है, खास तौर पर बच्चों में। दोस्तों, आई फ्लू यानी कि आप कंजाइटिवाइटिस भी कह सकते हैं, आंखों का लाल लाल हो जाना, पानी आना, खुजली होना, जलन होना या चिपचिपा सा महसूस होना, ये कई कारणों से हो सकता है। और संक्रमण वाला आई फ्लू आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, इसीलिए सलाह दी जाती है कि दोनों हाथों को हमेशा साफ रखें और बच्चों को आंखें रगड़ने से रोकें। आंखों को रगड़ने से जलन बढ़ सकती है और संक्रमण दूसरी आंख या दूसरे व्यक्ति तक भी फैल सकती है। बार बार बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करें, खासकर आंख छूने के बाद और खाना खाने से पहले। बच्चों का तौलिया, रुमाल, तकिया और चादर अलग रखें तथा नियमित रूप से धोया कीजिए। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपने भी नोटिस किया है तो अपने बच्चों का ख्याल रखें और इन सभी बातों का ध्यान रखें। आई फ्लू के दौरान आंखों को रगड़ने से बचना, हाथों की सफाई रखना, व्यक्तिगत सामान साझा ना करना और बिना डॉक्टर की सलाह के आंखों में कोई दवा या घरेलू पदार्थ ना डालें। अगर आप बच्चों को देखते हैं कि वो तकलीफ में है, आंखों की बीमारी फैल रही है, तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही दवाइयों का उपयोग करें। आई ड्रॉप हो या जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं, डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका उपयोग करें। आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, बताना चाहेंगे आपसे थोड़ी ही देर बाद, यानी कि ठीक 9 बजे से आप आनंद ले पाएंगे पुराने मगर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत का। इसी तरह से बने रहे हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, और आनंद लेते रहिए एक से बढ़कर एक मजेदार गीतों का।

तो दोस्तों बता दूं आपको कि इस गीत का आनंद आपने लिया फिल्म अजनबी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाजों में। और बता दूं आपको कि इस गीत की सबसे खास बात यह है कि इस गीत को चलती ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया था। स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। दोस्तों चलिए आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं अगले गीत की ओर।

मिशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

दोस्तों, कभी कभी हमारा मन भी उस पवन की तरह होता है जिसे खुद नहीं पता कि वह किसकी तलाश में है। बस एक अनजानी सी चाहत उसे लगातार आगे

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों आशा भोसले के गाए हुए इजाजत फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजंग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंथन। आज का हमारा विषय बेहद गंभीर भी है और वह देश के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ भी, नशा मुक्त भारत, भारत का 3 वर्षीय एक्शन प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ अगले 3 वर्षों के लिए एक व्यापक रोड मैप सामने रखा है। इस योजना में ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई से लेकर अवैध ड्रग लैब को खत्म करने, फरार आरोपियों को भारत लाने, नशे की मांग कम करने और डी एडिक्शन सेवाओं को मजबूत करने तक कई पहल शामिल है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं SPYM यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार। मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू श्रेया जी।
1: डॉक्टर राजेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए अगले 3 वर्षों का एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार किया गया है, आप के तौर पर इस लक्ष्य को किस तरह देखते हैं और क्या 2029 तक नशा मुक्त भारत एक व्यवहारिक लक्ष्य है और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?
2: ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छी बात यह है कि इसको उन्होंने मिशन मोड में लिया है और जो जो इसपे कॉन्टूर्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है उन्होंने डाला है, से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, बाहर से जो क्रिमिनल्स हमारे जो ड्रग इंडिया में लेकर आते हैं उनको पकड़ के लाना है, ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट करना है, वॉलंटियर्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और ये अगर मिशन मोड में सारे मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स अगर जुड़ेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है नेक्स्ट 3 इयर्स में पूरे देश को नशा मुक्त करना, मगर कंफर्टेबली अचीव हो सकता है, मगर 29 तक नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, चूंकि मैं पिछले लगभग 40 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूं, मगर एटलीस्ट एक मिशन मोड में काम तो शुरू हुआ और वो बहुत बड़ी चीज है
1: जी। इस एक्शन प्लान को 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताया गया है, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
2: देखिए, ये चारों इम्पोर्टेंट है, हम इसको कोई ये नहीं कह सकते ये नंबर वन है या नंबर टू है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले महीने में भारत सरकार ने एक बड़ा क्रिमिनल है बसोया जिसको दुबई से लाया गया, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग विद इन द कंट्री और बिटवीन कंट्रीज ये हो रहा है और इसमें काफी पॉजिटिव अब उसका रिजल्ट दिखने लग गया। विद इन द कंट्री जो जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग पुशर्स हैं, जो ड्रग कार्टेल्स हैं, उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है और काफी लोग अब इस धंधे से निकल रहे हैं जैसा हमें लग रहा है। अब इसका इम्पैक्ट तो समय पे ही मिलेगा। सो पहला जो है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, दूसरा इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं वो जो प्रीकर्सर एंड केमिकल ड्रग्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, जो ड्रग जो केमिकल ड्रग्स है, दो तरह के ड्रग होते हैं, एक होता है जो नेचुरल ड्रग होता है जैसे गांजा है, भांग है, अफीम है, कोकीन है, ये सब नेचुरल ड्रग है, इसको नार्कोटिक्स ड्रग कहा जाता है, और जो जो केमिकल ड्रग है उसको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो केमिकल ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विद इन द कंट्री वो अवेलेबल है, तो उसको अगर आप जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो बना रहे हैं केमिकल्स उसके ऊपर निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से ही कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ निकलते हैं जिससे जैसे फॉर एग्जांपल अफीम को प्रोसेस करने के लिए जिन केमिकल की जरूरत होती है वो भी हम ही बनाते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिससे मेथामफेटामिन टाइप के जो केमिकल ड्रग्स है उसको भी बनाने के लिए केमिकल्स हम ही बनाते हैं, तो प्रीकर्सर्स को भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है जिससे कि वो ड्रग नहीं बन पाए जो अभी बाजार में अवेलेबल है, और जो केमिकल ड्रग्स हैं वो भी नहीं बन पाए जो अभी नया ट्रेंड पिछले 4-5 सालों से शुरू हुआ है। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो पिलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो यंग पॉपुलेशन है ये अब चूंकि ये स्टिमुलेंट टाइप का ड्रग है जो लोगों को अच्छा लगता है।

0: अगर इस तरह का ड्रग लेते हैं, फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, इसका इलाज भी मुश्किल है, जो केमिकल ड्रग्स हैं, जो मेथ टाइप के ड्रग्स हैं, एमडीएमए है, मगर ये ड्रग केमिकल ड्रग है और ये तेजी से फैल रहा है, तो इसके लैब्स को भी रोकने की जरूरत है और उसके ऊपर काफी कार्रवाई पिछले 1 सालों में मैंने देखा है।
1: जी, जैसा कि हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो डिमांड और सप्लाई दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें समझ में आते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ सप्लाई रोकना काफी है? क्योंकि क्या भारत को अब ड्रग्स पकड़ने के साथ साथ अगर हम देखें तो ड्रग्स की मांग क्यों पैदा हो रही है, इस सवाल पर भी उतना ही गंभीरता से काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, आपने सही बोला, ये डिमांड एंड सप्लाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सप्लाई है तो डिमांड जनरेट होता रहता है, और अगर सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाता है, तो फिर सप्लायर नए तरीके से मार्केट में आता है। नो, फॉर एग्जांपल, नार्कोटिक्स ड्रग की जगह अब जो केमिकल ड्रग्स आ रहा है, उसका कारण यही है कि नार्कोटिक्स ड्रग को सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, काफी उसके ऊपर रोकथाम है। जो केमिकल ड्रग्स है उसको बनाना आसान है, और केमिकल ड्रग चूंकि मार्केट में आ रहा है और डिमांड है, तो उसके लिए नया नया कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है। कभी हो सकता है सप्लाई रिडक्शन पे ज्यादा हमें सफलता मिल सकती है, और कभी हो सकता है डिमांड रिडक्शन पे ज्यादा सफलता मिलती है, बट दोनों को एक साथ लेके चलने की जरूरत है, और भारत सरकार ने, इसके अलग अलग मंत्रालयों ने इसके ऊपर काफी काम करना शुरू कर दिया है।
1: सिंथेटिक ड्रग्स और नए तरह के नशीले पदार्थ तेजी से चिंता का विषय बन चुके हैं। आपके अनुभव में युवाओं को इन पदार्थों से दूर रखने के लिए स्कूल, विश्वविद्यालय, परिवार और सरकार, इन तीनों स्तरों पर क्या काम करने के लिए आवश्यकता है?
0: देखिए, अच्छी बात यह है कि 99% बच्चे नशा नहीं करते हैं, और वो फैक्ट है, अलग अलग डेटा में वो दिखता भी है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अधिकतर बच्चे अब स्कूल में हैं, तो स्कूल बेस्ड अभी भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नवचेतना। इसमें लगभग 10 लाख मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन हो रहे हैं, और वो 10 लाख 20-20 टीचर्स को ट्रेन करने जा रहे हैं, और ये प्रोसेस शुरू हुआ है, और इसका भी इनिशिएटिव माननीय अमित शाह जी ने लिया था, और ये प्रोग्राम स्कूल बेस्ड है, टीचर लेड है, तो ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव होना चाहिए घरों के अंदर। परेशानी यह है कि अधिकतर माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बच्चा नशा करने लग गया या नशा में वो लिप्त हो रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो माँ बाप को भी सजग होने की जरूरत है।
1: सरकार ने देश में डी एडिक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाकर 1751 करने की बात कही है। आपके अनुसार इलाज और पुनर्वास को और प्रभावी बनाने के लिए किन किन स्तरों पर सरकार का फोकस जरूरी है?
0: ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक जो नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबल थे मेरे ख्याल से 500 के आसपास था, और देश बहुत बड़ा है, और एक जो भारत सरकार का आंकड़ा है जिसको एम्स ने स्टडी किया था, उसमें करीब 6 करोड़ लोग हैं जिनको आज इलाज की जरूरत है, तो ये अगर नंबर बढ़ा है 1000 जो भी आप नंबर बता रही है 751, अगर ये हो रहा तो ये सब वेरी पॉजिटिव स्टेप। समस्या दो है। पहली समस्या ये है कि लोग इलाज के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवारजन को ट्रीटमेंट तक नहीं लेके जाना चाहते हैं, और उसमें स्टिग्मा एक बहुत बड़ा कलंक, एक बहुत बड़ा बैरियर है, तो सरकार को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए कि इस स्टिग्मा को एड्रेस करें, क्योंकि होता यह है कि अगर फादर को पता चला या मदर को पता चला कि मेरा बच्चा नशा लेता है तो वो उसको छिपाते हैं, जब वो छिपाते हैं तो धीरे धीरे वो समस्या और बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है, और दूसरी बाय द टाइम उनको पता चलता है कि हाँ अब इसको इलाज के ले जाने की जरूरत है, तब तक शायद वो बच्चा इलाज के लिए अब तैयार नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टिग्मा को घटाने की जरूरत है। दूसरा, जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स खुले हैं वहां पे जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट का 4 फेज होता है। पहला फेज जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन का फेज, तो उसमें परिवार और काउंसलर्स की भूमिका होती है, टीचर्स की भूमिका होती है कि आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ। दूसरा फेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्स का फेज। डिटॉक्स का मतलब जिसमें उसकी जो टूटन है, उसका जो विड्रॉल है, उसको मैनेज किया जाता है। तीसरा है रिहैबिलिटेशन का फेज। रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब है कि जब वो नशा करना शुरू किया था उसके पहले उसका जो लाइफस्टाइल था वो वापस लाइफस्टाइल उसको मिलना चाहिए और अटेंड करना चाहिए, तभी तो वो वापस सोसाइटी में और परिवार में रीइंटीग्रेट होगा। और चौथा उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी सपोर्ट, कि जब वो इसका इलाज हो गया, इलाज होने के बाद उसकी मदद करनी चाहिए कि वो रिलैप्स नहीं करे। तो इन तमाम चीजों के लिए जो सरकारी जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स बन रहे हैं उसमें जितने भी हर लेवल के जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, और अमित शाह जी ने अपने वो जो चौथा स्तंभ है क्षमता निर्माण है वो यही एग्जैक्टली, मतलब सप्लाई रिडक्शन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए और ड्रग ट्रीटमेंट

0: रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो और मैं छोटी बात कहना चाहता हूं कि एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसको जो हमें दिख नहीं रहा है, वो है बच्चों का पॉपुलेशन, जो बच्चे नशा करना शुरू कर दिया है, और महिलाओं का पॉपुलेशन। तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलाइज प्रोग्राम हो। स्पेशलाइज प्रोग्राम का मतलब है जो बच्चों का ट्रीटमेंट है वो एडल्ट के ट्रीटमेंट से बहुत डिफरेंट होता है, और महिलाओं का ट्रीटमेंट, चूंकि वो महिलाएं निकलना नहीं चाहती और परिवार निकलने नहीं देता है कि छिपाता है, तो ये जरूरी है कि दोनों के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम हो।
1: जी, सरकार ने 1,00,000 नशा मुक्त मित्र बनाने का भी लक्ष्य अपने सामने रखा है। आप इस पहल को किस तरीके से देखते हैं, और नशा मुक्त मित्र जो ये अभियान है इसको जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ये किस तरह का योगदान दे सकता है?
0: देखिए, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि नशा आम बीमारियों से बहुत अलग है। और अधिकतर जो यंग बच्चे जब नशा करते हैं तो उसके संपर्क में कौन होता है? माँ बाप नहीं होते, टीचर नहीं होते हैं, उन्हीं के हम उम्र के लोग होते हैं। तो अगर वो हम उम्र वाले बच्चों को अगर हमने ट्रेन किया, उनको हमने ओरिएंट किया, एक प्रोग्राम है जिसको पीयर लेड इंटरवेंशन कहा जाता है, तो उसके माध्यम से अगर हम उन बच्चों तक पहुंचे जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिन्होंने इनिशिएट किया है कि साहब अभी हम थोड़ा थोड़ा लेना हमने शुरू किया है, तो ये जो 1,00,000 वॉलंटियर्स है, और ये 1,00,000 वॉलंटियर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एनएसएस है, एनसीसी है, माई इंडिया है, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोग्राम भारत सरकार के चल रहे हैं उनके माध्यम से ये अचीवेबल है और ये होना भी चाहिए।
1: जी, अंत में डॉक्टर राजेश, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि हम अक्सर नशे की समस्या को केवल कानून व्यवस्था या स्वास्थ्य का मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परिवार, मानसिक सामाजिक परिस्थितियां, बेरोजगारी, साथियों का दबाव और सामाजिक वातावरण जैसे कई कारण भी हो सकते हैं। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में हो तो आपका सबसे पहला संदेश क्या होगा, और एक नशा मुक्त भारत बनाने में एक आम आदमी या आम नागरिक आज क्या भूमिका निभा सकता है?
0: बहुत लंबा सवाल है, संक्षेप में कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं बताऊं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिवार अपने बच्चों को जाने, उनसे बात करे। आजकल बच्चे परिवार के साथ नहीं बात करते हैं, वो रील से बात करते हैं। उन्होंने कुछ अगर सोशल मीडिया पे डाला और अगर उनको थम्सअप नहीं मिला तो वो निराश होते हैं, वो परेशान होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये सारा गेम डोपामिन का है। अगर उसको डोपामिन स्पोर्ट्स से मिल रहा है, डोपामिन उसको परिवार से बात करने में मिल रहा है, अपने दूसरे जो फ्रेंड्स उनसे बात करने में मिल रहा है, तो उसको इनकरेज करने की जरूरत है। तो इन सबसे काटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल और परिवार दोनों बच्चों को समझे, बच्चों के स्वभाव को समझे, बच्चे के बदलते हुए जो मानसिक स्थितियां हैं उसको समझे और उनसे बात करे।
1: जी, तो डॉक्टर राजेश, आपने हमें बड़े नशा की समस्या को सिर्फ एक कानून के नजरिए से नहीं बल्कि रोकथाम, इलाज, पुनर्वास और समाज की भागीदारी, इन सभी पहलुओं से समझाया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू श्रेया जी।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देश के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global FinTech Fest in Mumbai this evening.
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2,400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास की दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBC+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन कल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। नौसेना प्रमुख न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के अधिकारियों और पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। न्यूजीलैंड में एडमिरल स्वामीनाथन रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों और न्यूजीलैंड के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि बातचीत में भारत और बांग्लादेश के बीच साझा इतिहास, घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों और दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित किया गया। रूस ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले किसी भी शांति प्रयास का वो स्वागत करेगा। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे राजनेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री की होगी। रशिया और यूक्रेन की जो संघर्ष चल रही है उसके बारे में बात है। ये मुद्दा भी बहुत सारे मुद्दे जब द्विपक्षीय वार्ता होंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऊपर उठ के आएंगे और उसमें एक ये मुद्दा भी रहेगा।
0: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब ने

0: ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर यमन में लगातार हमलों के बाद हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। यमन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने आज कहा कि हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के शहरों आबा, खमीस, मुशैत, जाजान और नजरम में नागरिक और आर्थिक स्थलों को निशाना बनाया। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 73 नागरिक घायल हुए हैं। ये सऊदी अरब की संप्रभुता का उल्लंघन और उसके नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इसमें इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस समेत 12 देशों ने आज घोषणा की कि वो वेस्ट बैंक में अवैध इसराइली बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये कदम कब्जे वाले क्षेत्र में फिलिस्तीनी गांवों पर इसराइली बस्तियों द्वारा कथित हमलों में वृद्धि के बाद उठाया गया है। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन के विदेश मंत्रियों ने भी बस्तियों के साथ व्यापार सीमित करने की योजना बनाई है। मंत्रियों ने कहा है कि 12 देश उन बस्तियों से आने वाले सामानों पर राष्ट्रीय और यूरोपीय व्यापार प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अवैध हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देश अपने राष्ट्रीय कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुरूप अन्य उपायों पर भी विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने आज संसद में बोलते हुए इसराइल की सरकार पर वेस्ट बैंक में बस्तियों द्वारा किए जा रहे जातीय सफाई को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से मानवाधिकार अधिवक्ता ईमान मजारी हाजिर और हादी अली शट्टा को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। एमनेस्टी ने कहा है कि दोनों को साइबर अपराध कानूनों के दुरुपयोग के आरोपों के बीच लंबे समय से जेल में रखा गया है। दोनों वकीलों को इस वर्ष 23 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले दिन इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अपराधों से जुड़े कानून के अंतर्गत 10 से 17 वर्ष तक की सजा सुनाई थी। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के वैश्विक विस्तार और प्रेक्षण लागत में बचत पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। सऊदी अरब में कई तेल सुविधाओं पर हूती विद्रोहियों के हमले में 73 लोग घायल और अहमदाबाद में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम हरप्रीत कौर विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi pushes for global expansion of UPI and saving remittance costs. Russia-Ukraine conflict among various issues to figure in talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin on sidelines of BRICS summit in New Delhi. Russia backs India's peace efforts to end Ukraine war, says Moscow aligns with New Delhi's position on the issue. Houthi strikes multiple oil facilities in Saudi Arabia. 73 people injured. And India won 5 medals, including 2 gold at World Para Archery Series in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today called for expanding the global reach of India's Unified Payments Interface, UPI. He urged the fintech sector to connect the country's homegrown retail payment network, UPI, with payment systems in more countries and help the Indian diaspora reduce remittance costs. Mr. Modi stated this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening. He said Indian UPI is now operational in 11 countries.
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी.
1: Lauding the country's remarkable GDP growth in the first quarter of current fiscal, Mr. Modi said, world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts.
2: Duniya conflicts aur uncertainty ke daur se guzar rahi hai aur isme bhi jab Bharat 7.8% se grow karta hai to duniya ko ek naya bharosa milta hai. भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है.
1: The 4-day Global Fintech Fest 2026 will conclude on Friday. The Russia-Ukraine conflict is expected to figure prominently in talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the BRICS summit later this week. The two leaders are expected to discuss a range of bilateral, regional and global issues during their meeting. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stated this while briefing media in New Delhi today. He said Prime Minister Modi will hold bilateral talks with numerous leaders during the BRICS summit, which will be held on 12th and 13th of this month in New Delhi.
3: द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे राजनेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री की होगी.
4: The Prime Minister will hold bilateral talks with the leaders attending the summit. Details of these meetings will be shared with you. As for the ongoing Russia-Ukraine conflict, several issues will come up during the bilateral discussions and this will be one of them.
3: और उसमें एक ये मुद्दा भी रहेगा.
1: The talks come as the war in Ukraine continues with efforts to find a lasting solution remaining a key international concern. On the conflict, the spokesperson said, India is in touch with both Russia and Ukraine and is trying to see if there are ideas and suggestions that can contribute to the cessation of the war. Meanwhile, Russia has said that it welcomes any peace efforts by India to end the Ukraine conflict, noting that Moscow's strategy aligns closely with New Delhi's position for a resolution through dialogue and diplomacy. Kremlin spokesman Dmitry Peskov made the remarks while addressing media at a virtual briefing in New Delhi this afternoon ahead of the BRICS summit.
5: We know the position of India on Ukrainian conflict, and to a great extent it corresponds with our own position, because we do want the solution of Ukrainian conflict by peaceful means, and Russia is open for this process. We actually never wanted this war, but we're trying to stop the war that was launched before. It was not started by us.
1: Mr. Peskov added that bilateral talks between the two leaders later this week will be an opportunity for President Putin to inform Prime Minister Modi about the situation on the war with Ukraine. He said both leaders are in close personal contact and very pragmatic in their relationship. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a 3-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at the Bandaranaike International Airport by Sri Lankan Deputy Minister of Defence Aruna Jayasekara and Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha. During his visit, the Defence Minister will hold talks with Sri Lanka's leadership on various issues to further strengthen bilateral ties in mutually beneficial areas, including a strong maritime and defence partnership. India's High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, made a courtesy call on Bangladesh President Mirza Fakhrul Islam Alamgir at Bongabhavan in Dhaka today. During the meeting, the two sides emphasized the importance of strengthening bilateral ties for the mutual benefit of the people of both countries. In a social media post, the Indian High Commission in Dhaka shared that their discussion underscored the deep-rooted bonds between India and Bangladesh, built on shared history, close cultural ties and people-to-people relations. This is Akashwani. You're listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. Saudi Arabia has accused Iran-backed armed group Houthi in Yemen of a dangerous escalation after a series of attacks targeting the energy sector facilities and installations in the kingdom. The Saudi-led coalition supporting the internationally recognized government in Yemen today said the attacks caused fires at several oil facilities and utility sites in Saudi Arabia's southern region, leaving at least 73 people injured and prompting temporary operational suspensions at affected facilities. Saudi-led coalition spokesperson Turki al-Maliki said the attacks amounted to a violation of Saudi Arabia's sovereignty. In a post on social media, al-Maliki said the coalition's joint forces command would take necessary operational measures to deter the group, respond to the sources of the threats and neutralize the danger. The Houthis, meanwhile, said they had targeted several sites in Saudi Arabia, including Abha International Airport, King Khalid Air Base and facilities belonging to state-owned oil giant Aramco in Abha and Jazan. 12 countries, including Britain, Canada and France, today said they will impose sanctions on trade with Israeli settlements in the West Bank following an alleged increase in attacks by Israeli settlers on Palestinian villages in the occupied territory. Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Norway, Poland, Portugal, Spain and Sweden also plan to limit trade with settlements. British Foreign Minister Ed Miliband, speaking in the Parliament today, said the UK government would introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories in a move coordinated with other countries. Amnesty International has urged Pakistan government to immediately and unconditionally release human rights lawyers Iman Mazari Hazar and Hadi Al-Chatha, whose convictions and prolonged imprisonment have raised serious concerns over the misuse of cyber crime laws to silence dissent. And India bagged 5 medals, including 2 gold, 2 silver and 1 bronze on the penultimate day of the Stage 3 of World Archery Para-Series in Ahmedabad today, with the men's teams winning the top honours. Reigning world champion Toman Kumar and Shyam Sundar Swamy clinched the gold medal in the men's compound team event. Men's duo of double Paralympic medalist Harvinder Singh and Vijay Sundi overcame Slovakian pair to bag yellow medal in recurve team event. The women's recurve team of Bhavna and Pooja settled for silver. Swati and Adil Mohammed Nazir Ansari took silver in the mixed team W1 recurve and compound event. Swati then claimed bronze in the individual W1 category. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin. Prime Minister Narendra Modi pushes for global expansion of UPI and saving remittance cost. Russia-Ukraine conflict among various issues to figure in talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin on sidelines of BRICS summit in New Delhi. Russia backs India's peace efforts to end Ukraine war, says Moscow aligns with New Delhi's position on the issue. Houthi strikes multiple oil facilities in Saudi Arabia, and India won 5 medals, including 2 gold at World Para Archery Series in Ahmedabad. That concludes tonight's World News Bulletin. For more updates, stay tuned to Akashwani. Good night.